FM बैंड 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। इस वक्त प्रातः के 5:58 व 36 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक

0: में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भगवान गणेश के सिमरन के साथ ही कार्यक्रम का आगाज और आरंभ अगर हो जाए तो कहते हैं सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि भगवान गणेश को माना गया है ये विघ्न विनाशक हैं और हर बाधा को दूर कर देते हैं। यूं तो भगवान गणेश की हम बात कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारिए, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए।

कहते हैं जब आत्मा परमात्मा के रंग में रंग जाती है तो दुनिया के सारे रंग फीके लगने लगते हैं। भक्ति का एक ऐसा गहरा रंग है जो जब किसी पर भी चढ़ता है तो अंतरात्मा रूह तक महक उठती है।

इस निष्प्रेम भक्ति के बाद जब प्रभु मिलते हैं तो फिर उसका आनंद ही कुछ अलग होता है, कुछ अनोखा होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर ए हरिहरण का, और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

पवन पुत्र हनुमान सुग्रीव के गुप्तचर के रूप में श्रीराम लक्ष्मण के पास गए थे, किंतु उन्हें अपने इष्ट देव को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। सीता हरण की घटना सुनकर वे तुरंत श्रीराम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले आए, जिनकी असंख्य वानर सेना के लिए जगत जननी सीता को ढूंढ लेना असंभव नहीं। सुग्रीव ने विलाप करती परवश सीता को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हाराम हाराम कहकर रोती बिलखती सीता का एक वस्त्र वहां गिरा था। श्रीराम को धीरज बंधाते हुए सुग्रीव ने वह वस्त्र खंड उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार उन्हें श्रीराम के विश्वास और मैत्री का गौरव प्राप्त हुआ। जब श्रीराम ने सुग्रीव से उनके वन में निवास करने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अत्यंत स्नेही भाई बाली उनका शत्रु बन बैठा। उसने न केवल उनका राज्य बल्कि पत्नी तक छीन ली। ये सब उस मायावी राक्षस के कारण हुआ, जिसका पीछा करते बाली ने यह कहकर गुफा में प्रवेश किया कि यदि वह राक्षस का वध करके 15 दिनों में लौट कर ना आवे तो उन्हें मृत मार लिया जाए। सुग्रीव ने पूरे 1 माह तक भाई की प्रतीक्षा की और गुफा से बाहर आती लहू की धार देखकर यह मान लिया कि बाली की हत्या हो गई।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर ए हरिहरन का था, संगीत दिया सतीश भाटिया ने। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आज विक्रमी संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और अब बारी है अपडेट्स की।

देश के कई हिस्सों में मॉनसून की रफ्तार तेज़। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से भारी तबाही की आशंका है।

महिला क्रिकेट में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। शेफाली वर्मा के तूफानी अर्धशतक की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले बाकी के कार्यक्रमों की।

युववाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। आज इसमें जानकारी हासिल कीजिएगा, यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। शाम 6:30 पर किसान भाई अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनेंगे अन्नदाता। शाम 7 कार्यक्रम ग्राम संसार होगा। सुनिएगा गीता संदेश शाम 6:20 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के श्लोक 3-5 की व्याख्या। व्याख्या करेंगी डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी। प्रातः 7:50 पर सुनिएगा बाजिया नगाड़ा। प्रातः 7:40 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। इसके तहत आज सुनिएगा स्त्रियों के विरुद्ध अपराध, इस विषय पर चर्चा। वाचक स्वर श्याम गुप्ता का रहेगा। प्रातः 9:30 पर गैर फिल्मी नगमों, गीतों और कव्वालियों का कार्यक्रम स्वरांजलि होगा। सुनिएगा कार्यक्रम जय जवान शाम 7:30 पर। गैर फिल्मी नगमे, गजलें और कव्वालियों का कार्यक्रम गुलदस्ता सुनिएगा शाम 7:45 पर। सुनिएगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत रात्रि 8:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00। विविध रंगी कार्यक्रम सुबह सवेरे का समय रहेगा प्रातः 8:30।

सजीव फोन इन नमस्ते कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़िएगा प्रातः 10 बजे। शाम 5 बजे आप सुनेंगे गाने नए पुराने। हिंदी में समाचार होंगे प्रातः 7 बजे, प्रातः 8 बजे, दिन में 2:15 पर, शाम 6 बजे और रात्रि 8:45 पर।

एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, तत्पश्चात हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्रोकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27 to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. He will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on the Narcotics Control 2026 to 2029, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. In a major relief to the industrial and commercial LPG consumers, the government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation. The National Testing Agency NTA has opened a window for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. The NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 200 rupees.

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है।

0: और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओ, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं, और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है, और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की परतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: यह भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you!
4: Happy birthday to you, Stephen! Thank you, Thomas. Congratulations! Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
5: Oh, fine, fine.
4: Thanks for coming in. Please come in.
5: Oh, sure.
4: Yeah,
5: why not?
4: Come here.
5: Oh, sure.
4: Yeah.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल।

0: harcıyorum.
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है।

0: चक है, यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने।
1: जी
0: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
1: तो लीजिए सुनिए।
2: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
3: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
3: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
3: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
3: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
3: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
4: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल

0: के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
3: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया, गौरव, सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
4: आग का गोला?
3: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
5: सूरज।
3: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
6: बहुत आसान पूछते हो।
3: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
6: अगली बार में बहुत मुश्किल।
3: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
6: हाँ।
3: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
6: हाँ। मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
3: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
7: वो तारा होता है।
3: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
8: वो रात और दिन भी बनाता है।
3: एकदम सही, एकदम सही।
9: वो हमें धूप भी देता है।
3: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
6: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
3: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
6: विटामिन डी।
3: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
9: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
3: हाँ हाँ बिल्कुल।
6: पेड़ों को खाना भी देता है।
3: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
6: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
3: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
6: हाँ।
8: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में
3: आता है। हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
6: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
3: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
6: वो तेज चलती है, तो ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
9: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है,
3: है ना?
9: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
3: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
6: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
3: बहुत बड़ा होता है
9: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
3: हम क्योंकि कहीं
6: दूर होता है इसलिए,
3: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
6: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
3: हाँ
9: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
3: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
5: सर्दी।
3: ओह ऐसी वाली सर्दी ना।
6: हाँ।
3: अच्छी लगती है सर्दी?
6: हाँ। पर सर्दी में

0: ये दिन रात बनाता है।
1: ये दिन रात बनाता है।
0: देह प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: देह प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ?
2: वो भी दस
0: पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
2: मौसी
0: डर जाती है।
2: और आपके कुल मिला के
0: 70
2: हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा। इसमें आज चर्चा का विषय है स्त्रियों के विरुद्ध बढ़ते अपराध। वाचक स्वर श्याम गुप्ता का।

गांधी चर्चा के अंतर्गत आज सुनते हैं स्त्रियों के विरुद्ध अपराध के संबंध में गांधी जी के विचार और बापू का प्रिय भजन। तो सबसे पहले स्त्रियों के विरुद्ध अपराध के संबंध में गांधी जी के विचार। मेरी सदा से ये धारणा रही है कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ कुकृत्य करना असंभव है। ऐसा तभी होता है जब वह भयग्रस्त हो जाती है या अपनी नैतिक शक्ति को नहीं पहचान पाती। यदि वह आक्रांता की शारीरिक शक्ति का मुकाबला न कर पाए तो उसके चरित्र की निर्मलता उसे पुरुष की पाशविकता का शिकार होने से पहले ही अपने प्राण दे देने की शक्ति प्रदान करेगी। सीता का उदाहरण लीजिए। शारीरिक दृष्टि से वह रावण के आगे कमजोर थी, लेकिन उसकी चारित्रिक निर्मलता रावण के अकूत बल पर भी भारी थी। उसने सीता को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, पर वह सीता की सहमति के बिना उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर सका। इसके विपरीत यदि स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति या हथियार पर भरोसा करे तो उस शक्ति के चूकते ही वह परास्त हो जाएगी। मेरी निश्चित धारणा है कि जो स्त्री निर्भय है और ये जानती है कि उसकी चारित्रिक निर्मलता उसकी सबसे बड़ी ढाल है, उसकी आबरू कभी नहीं लूट सकती। पुरुष कितना ही पाशविक हो, वह उसकी निर्मलता के अग्नि स्तंभ के सामने शर्म से छुप जाएगा। इसीलिए मैं महिलाओं से कहता हूं, साहस पैदा करने की कोशिश करो।

अगर वे ऐसा कर सकें तो वे निर्भय हो जाएंगी और आक्रमण का विचार मन में आते ही आज की तरह कांपना बंद कर देंगी। अभिभावकों और पतियों को चाहिए कि महिलाओं को निर्भय बनने की शिक्षा दें। जब स्त्री पर आक्रमण हो तो उसे हिंसा अहिंसा की बात नहीं सोचनी चाहिए। उसका प्रमुख कर्तव्य अपनी रक्षा करना है। अपनी आबरू को बचाने के लिए जो भी उपाय उसको सूझे वह उसे अपनाए। ईश्वर ने उसे नाखून और दांत दिए हैं, उसे अपनी पूरी ताकत के साथ उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें स्त्री की आबरू पर इस तरह के हमले होते रहते हैं। जिस पुरुष या स्त्री ने मृत्यु के भय को जीत लिया है वह अपनी जान देकर स्वयं अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते बल्कि दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। वीरता और इज्जत के साथ मरने की कला सीखने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए केवल ईश्वर में जागृत विश्वास चाहिए। अभी आप सुन रहे थे स्त्रियों के विरुद्ध अपराध विषय पर गांधी जी के विचार, और आइए आप सुनते हैं बापू का प्रिय भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। इसके तहत आज आपने स्त्रियों के विरुद्ध बढ़ते अपराध पर चर्चा सुनी। वाचक स्वर श्याम गुप्ता का था। आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाजे नगाड़ा।

0: बाजे नगाड़ा में आप सुन रहे हैं राम कुमार जुएनवाला को।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
2: अरे हिंदुस्तान आजाद देश की ताकत और बढ़ानी से

0: आपस में लड़ना भिड़ना या कितनी गलत कहानी सर फार पड़ना बजे बजा की बाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव,

करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी के परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत

0: बात करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा।

0: दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत। लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड क्वीन मैक्सिमा ऑफ नेदरलैंड्स डिस्कस इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड रिवॉल्यूशन। गवर्नमेंट रिस्टोर्स commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on narcotics control 2026-29, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. More from our correspondent.
3: The Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis,

कार्यक्रम सुबह सवेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को शशि बाला की प्यार भरी नमस्ते। दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? बढ़िया ही होगी, अब जिंदगी है तो बढ़िया ही होती है। देखो, जिंदगी अगर है तो छोटी मोटी समस्याएं तो आती ही रहती हैं। इन समस्याओं से जूझना, इन्हें हल करना आना चाहिए, फिर तो भाई ये जो आपके समस्याओं वाले पल है ना, ये आसानी से कट जाते हैं, आसानी से बीत जाते हैं। बस आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते। इसलिए पड़ोस में रहने वालों के साथ, घर में परिवार के साथ, ऑफिस में दोस्तों के साथ मुस्कुराइए, हंसिए, दुआ सलाम कीजिए और फिर देखिए, आप तो प्रसन्न होंगे ही और सामने वाला भी खुश हो जाना है। बिल्कुल,

और दोस्तों अब समय हो गया है आपसे आज का प्रश्न पूछने का, तो ध्यान से सुनिएगा आज का प्रश्न, क्योंकि अगर आप सही जवाब देंगे तो ही आपके नाम कार्यक्रम में हम शामिल कर पाएंगे। हमारा आज का प्रश्न है, सिरसा की किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है? ध्यान से सुनिए, सिरसा की किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नवाजा है? सही उत्तर आपको जल्द से जल्द SMS के जरिए हम तक पहुंचाना है, और SMS आपने किस नंबर पर करना है? 94660-21336-94660-21336 पर आपने अपना जवाब हमें लिखकर भेजना है। तो आपके उत्तर का हम इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से हमें लिखकर भेजिए। और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
5: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
4: क्या ये जांच उपलब्ध है?
6: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
7: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
6: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
7: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
8: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: दोस्तों, अब हम एक बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा हम भी कर लेते हैं। भाई मादक पदार्थ, देखिए ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में ये दवाइयों में डालने के लिए या किसी भी और अन्य उपचार के लिए चाहिए होते हैं, या किसी भी तरह से अगर इनका डॉक्टर उपयोग करते हैं या रिसर्च वर्क में इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग तो ठीक है, दुरुपयोग बहुत ख़राब है। जब इन पदार्थों की अवैध तस्करी की जाती है और इन्हें नशे के रूप में ले लिया जाता है, तो ये एक बहुत ही खराब बात है और इसे ही मादक पदार्थों का दुरुपयोग कहते हैं, जो कि इंसान को कहीं अंधेरे गर्त में धकेल देता है। सपने टूट जाते हैं और एक खामोशी अंदर ही अंदर खोखला कर देती है सब कुछ। दोस्तों, नशा सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि उसके हंसते खेलते परिवार का, उसके सुनहरे भविष्य का कत्ल है। वो सुनहरे भविष्य को निगल जाता है। अक्सर नशे की शुरुआत एक कश से होती है या एक घूंप से होती है, या फिर ऐसा सोचकर की जाती है कि एक बार ट्राई करने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन कब ये आदत एक गहरी दलदल में आपको धक्का दे देती है ना, पता ही नहीं चलता। अवैध तस्करी करने वाले लोग कुछ पैसों के लिए युवा पीढ़ी की रगों में जहर घोल देते हैं।

साथियों, अगर इस दलदल में, नशे की दलदल में कोई इंसान चला ही जाता है तो याद रखिए, बाहर निकलने का रास्ता हमेशा खुला है। अगर आपका कोई अपना इस रास्ते पर भटक गया है तो उसे सही राह पर लाया जा सकता है, उसे संभाला जा सकता है, उसे इलाज और आपके साथ की ही ज़रूरत है। तो आइए हम सब मिलकर एक वादा करते हैं अपने आप से, अपने परिवार से, अपने देश से और अपने साथियों से कि इस नशे के काले कारोबार के खिलाफ हम मिलकर आवाज़ उठाएंगे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसे किसी जहरीले धुएँ या इसे किसी भी जहरीले धुएँ में आप मत उड़ाइएगा। चुनाव आपका अपना है, चुनिए अपनी सेहत, चुनिए अपनी खुशियाँ और चुनिए जिंदगी।

0: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: दोस्तों, सिर्फ जिंदगी में अगर कोई राजा है तो राजा हो जाना एक बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है कि एक ऐसा राजा होना जो अपनी प्रजा के हक के लिए अपनी पूरी रियासत को बदल दे। जी हाँ, आज हम बात एक ऐसे ही राजऋषि की करेंगे जिन्होंने दबे कुचले वंचितों को समाज में बराबरी का हक दिलाया। जी हाँ, हम बात करेंगे साहू महाराज छत्रपति शिवाजी की।

छत्रपति साहू महाराज जयंती आज है और छत्रपति साहू महाराज ने कोल्हापुर की रियासत से उठकर पूरे देश को सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाने वाले वो राजा थे जिन्होंने गरीब तबके को ऊपर उठाया। उन्होंने सिर्फ हुक्म ही नहीं चलाया बल्कि मुफ्त शिक्षा की अलख जगाई। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जैसी महान शख्सियत के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद भी की।

महान राष्ट्रनायक राजऋषि छत्रपति साहू महाराज जी को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की तरफ से कोटि कोटि नमन।

जीते की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, सिरसा की किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नवाजा है। तो सही उत्तर है सविता पूनिया। और सही उत्तर देने वाले बहुत से श्रोता हैं। गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अनाया और ओजस अवाना ने सही जवाब दिया है। योगी मोहल्ला बराड़ा से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर और गुरशबद सिंह राहुल। अगला सही जवाब हमें लिखकर भेजा है बलजीत मनकस मूर्ति देवी और संतोष ने, गांव सुई तहसील भवानी खेड़ा जिला भिवानी से। नाहन हिमाचल प्रदेश से योगी ठाकुर और रीमा ठाकुर का सही जवाब। आकली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी और श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी। मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला। साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति खमारिया छत्तीसगढ़ से। भिलाई से मुकेश शर्मा गौरव और गरिमा शर्मा। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह। टिया कृष्णा सोलन हिमाचल प्रदेश से। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। बिहार स्टेट से डब्ल्यू वली बेलदार, उल्ला वली बेलदार और सोनम वली बेलदार। लाडवा से चांदींगड़ा, ईशु और एमी। रामनगर कैथल से सुनील दत्त, विनायक दत्त और आशा रानी। बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। मोहम्मद जाहिद अली सैफी, मोहम्मद जोहान सैफी, लीबा मलिक और आबाद खान हमारे साथ जुड़े हैं छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से। फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, हेयांश कुमार चंदन सौंगा मगर लोड से। भाणा ब्राह्मण वाला नरवाना से मेघराज शर्मा। बिहार कॉलोनी दिल्ली से वसीम वली चामोरिया, अल्ताब वली और सरफुद्दीन वली। गजराज कार्तिकी और हर्षित पानू गांव फुरलक जिला करनाल से। गौतम कुरुक्षेत्र से। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। सुंदरनगर हिसार से मोनिका पंकज और कीरत। रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा। ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। कल्याण मुंबई से किशोर सुजाता और प्रतीक हिवराले। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार काम्बोज, वंश और भुवेश कुमार काम्बोज। जिमी शेख, डोगेस शेख फुरलक करनाल से। टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, ध्वनि सानवी और छाबड़ा परिवार के सभी सदस्य। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ अर्चनाताई और हीरामन शिंदे। चंडीगढ़

से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा, हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से, कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता बंटी और शंटी के साथ लाडी, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी और गौरव सैनी, फातिमा उल्ला सोनम और आसमा उल्ला चामुरिया पटना बिहार से, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू और चंपा साहू, वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार प्रमिला और भावेश कुमार भावसार, सेक्टर 5 जोध नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी और बेबी बॉय हिमाक्ष, हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा बिमला इंदु पार्वती और हिमांशु। अगला सही जवाब हमें लिखकर भेजा है, देखते हैं किस श्रोता ने सही जवाब लिखा है। ये हैं राजेश, राहुल, शीला, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, और राजेश, राहुल और शीला हमारे साथ जुड़े हैं जिला खंडवा गांव लाहौरी से, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से वीना ढींगड़ा, कृतिका, विशु और विजय, सरोज सैनी, राकेश सैनी, यादविंदर सैनी सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से, देवशंकर, अजय देव तामुरिया और अल कबीर बालोद छत्तीसगढ़ से, पाकुड़ झारखंड से उत्तम, श्वेता, किसुता, सुअर्णब आनंद और सत्यम आनंद, गांव पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा और अंजनी ज्योति वर्मा, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर। अगला सही जवाब हम ढूंढ लें कि हमें किसने भेजा है। श्रोताओं, हम आपको एक बार बता दें कि जिन भी श्रोताओं के गलत जवाब होते हैं हम उनके नाम शामिल नहीं करते हैं। रजाक, शमीम बेगम, इरफान हनुमानगढ़ राजस्थान से सही जवाब देने वाले श्रोता, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश और मधु गोस्वामी, संतोष, संजना और अनन्या नामदेव हैं मेन मार्केट सोरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से, गुजरात से धीरज वी रबारी। अगला सही जवाब है दरियापुर भाबली महाराष्ट्र से गजानन जेले, नवदीप और विश्वदीप जेले, नजफगढ़ नई दिल्ली से सुमन, गौरव शर्मा और सौरभ शर्मा, मोहम्मद सईद, अब्बासी, निघट, प्रवीण, शाहफराज, सरफराज, अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य ऊपरकोट बुलंदशहर से, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ, सैफुल्ला और सबाहत हुजरे, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी और नौशाद सलमानी, राशिद हुसैन, नसरीन और नौरीन अंसारी जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा और यश मंसूरी, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश उषा राय और अमित कुमार रॉय, अकरम, इशरत, वसीम, रूबीना और आरिज वसीम, नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से, माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा राजनांदगांव नारायणगढ़ से राजनांदगांव से नारायणलाल साहू, नेहा देवी और मिलिंद कुमार साहू, उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी साहिल, भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, रादौर से राजकुमार पुजारा, अनीता और साहिल पुजारा, एसएम जावेद गुमला झारखंड से, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय सिंह, कविता, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश, बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत, प्रिया और समीक्षा भाष्यंकर, मुरादाबाद से मुकेश, बलबीर, अमर सिंह और परमीत कश्यप, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे और संदीप बाठे, कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से अंग्रेज संदीप और बंसी, गोवर्धन कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन,
चैतन्य मस्की।

मेघा आशीष राजा। अगला सही जवाब मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी और मोहम्मद तौसीफ हाशमी का। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, थॉमस, लवली और पिंकी। नाला सुपारा मुंबई से आसिफ, रूमा और सुलेमान शेख। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। पंजाब से राज शर्मा, मीना और योगेश शर्मा। बिलराम गेट कासगंज से एस असलम एफ सैफी। मदनपुर छत्तीसगढ़ से श्रवण, योगेश और राहुल साहू। पोटिया कला दुर्ग से संजय और सुजाता साहू। गुजरात गांधी गांव से प्रवीण, जगदीश और लड्डू कुमारी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। पीएस नुहानकर, निर्मला, विशाल नुहानकर, नलवेश्वर नगर, नरवेल महाराष्ट्र से। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना, केशु, तुलसी। चंडीगढ़ से स्वाति और स्मृति। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल और सोनू भाटिया। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से मास्टर अलिम पटेल, मुजाहिद और नदीम पटेल। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, बक्सर बिहार से राज एस डी अंसारी। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, कमला और गीतिका भानु। पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। अगला सही जवाब हम देखें हमें किस श्रोता ने लिखकर भेजा है। ये हैं गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और राघव। गांव पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना, विनय शंकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण, जगदीश और हिरेन। तेलंगाना निजामाबाद से शेखल्ला बख्श, राजेश साबले पाटिल। गांव गोंदर करनाल से किरणपाल बुम्बक, राममूर्ति और सरबजीत बुम्बक। डोंडी लाहौरा से तुषार, आरती और खंडवा से निशा जाटव। पीपर पारा पालचुआ मंगुएली छत्तीसगढ़ से उत्तर परमेश्वरी भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका। गांव चौल हलदा बागपत से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया। बुलढाणा वरचिंगी से अमोल बुलढाणा, इस्लामपुर से सहदेव दामोदर। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबरी महराज, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। शास्त्री नगर बीड शहर से किसन, आशा और विशाल सपकाल। माघेराम सैनी, पूनम सैनी, प्रतापगढ़ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। अगला सही जवाब आया है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम और मोहम्मद अफजल का। शनि मंदिर चौक खंडवा से अनीता, आशा और डोंडी लाहौरा से दीपक चौरसिया का भी सही जवाब है। इनके साथ है डोंडी लोहारा से राधिका बेलदार और प्रभा बेलदार। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम और निमित देशानी। विनय मोहन सेक्टर 18 जगाधरी से। जयश्री सुनील बेंगलोर से। रायसन करनाल से रजनीश बत्रा और कबीर। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े और करुणा कामड़े। खंडवा से कुमारी दुर्गा, गौरव। डोंडी लाहौरा से प्रभा बेलदार। आपने फिर से लिखकर भेज दिया है, आपका नाम एक बार हम पुकार चुके हैं, आप बार बार क्यों लिखकर भेजते हैं? तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि एक बार ही आप हमें अपना सही उत्तर लिखकर भेजिए, और बार बार अगर आप भेजिए

तो इससे बाकी श्रोताओं के नाम रह जाने का एक जो शुबा हो जाता है। स्मृति, सुनील, कमल, गव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराओं से, ललिता सिंह, भगवान सिंह, शिलाई, हिमाचल प्रदेश सिरमौर से, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, गंज टुंडवारा से शमसुल कलीम अंसारी और उस्मान अंसारी, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन, शहनाज और नवेद हसन, गोरैया जलंधर से अशोक जाटव, बिहार स्टेट डुमराव से वली उल्ला, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया। अगला सही जवाब देखें किसने लिखकर भेजा है। ये है भीमखोज तरपोंगी, सुभाष गुप्ता और देवकी गुप्ता, भीमखोज तरपेंगी से। मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज बेबी, फातिमा गाजी रेलवे रोड गंज डुंडूवारा से, रश्मि झरना राजकोट से, इन्होंने सही जवाब लिखकर भेजा है। वीरम गांव से अर्चना, खुशी, कुशल, जोशी और इनके साथी मोहित शर्मा और इनके साथी करनाल से, गांव कलाना से तहसील गांव कलाना हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम, सचिन, योगेश और युथव कड़वासरा। अगला सही जवाब देखें हमें किसने भेजा है। ये हैं कोमल सेन, तोषण, विनायक, सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश, प्रीति, कार्तिक और आर्यन वर्मा, गांव सांतड़ी से ईश्वर दयाल काम्बोज, लाजवंती काम्बोज और भव्य काम्बोज। अगला सही जवाब हमें लिखकर भेजा है एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव, एस के पपी ने, चंडीगढ़ से बिमला और सतीश, हनुमंत शिंदे ऋषिकेश सांगली से, मीन बाजार कुंडलवा से कुंडलवाड़ी से गंगाधर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले, फागुराम ज्योति, ओजस्वी यादव संबलपुर कांकेर से, लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार, संतोषी और निशांत ध्रुव, चंदूलाल नारायणी और वान्या सिंगरौल छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल और पूजा, अगला सही जवाब हम देख रहे हैं कि किस श्रोता का है। तन्मय सिंह और सिद्धांत सिंह शिलाई हिमाचल प्रदेश से, प्रकाश प्रिंस और निखिल वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कनेर मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक वंश बत्ता। अगला सही जवाब हमें लिखकर भेजा है महेश ज्ञानेश्वर निर्मला रामटेके ने फ्रेजरपुरा अमरावती से, और इसके बाद सविता पूनिया सही जवाब है और ललिता और भगवान सिंह शिलाई हिमाचल प्रदेश से सही उत्तर देने वाले हमारे श्रोता हैं। पन बघेरा जिला राजनंद गांव से योगेश सारवा और आशा सारवा, अगला सही जवाब हमें लिखा है राजाजी नगर बेंगलोर से एनर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार से मोहम्मद रफीक, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवार, नरेश मल्होत्रा, भावना, अनिल कटारिया ख्याल बाजार पानीपत से, बेंगलोर से

राधिका और तनिष्का। तो आप सभी श्रोताओं ने हमारा कार्यक्रम सुना, हमें सही जवाब लिखकर भेजे, इसके लिए आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।

श्रोताओं, आज मुहर्रम भी है, तो आज से सदियों पहले कर्बला के तपते रेगिस्तान में एक ऐसी जंग हुई थी जहां एक तरफ जुल्म की बेहिसाब ताकत थी और दूसरी तरफ सिर्फ 72 लोग थे। लेकिन उन 72 लोगों के पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो था ईमान, सब्र और सच्चाई का रास्ता। हजरत इमाम हुसैन ने उस तपती रेत पर अपने परिवार और साथियों की कुर्बानी दे दी, लेकिन जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाया। जीत हमेशा सच्चाई और सब्र की ही होती है, चाहे झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे संपन्न करने की दीजिए शशि बाला को अनुमति। कल फिर हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम में 8:30 पर। तो सुनिए ना, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे, कल भी, परसों भी और हर रोज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरांजलि।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
3: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
2: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
4: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIILM विश्वविद्यालय में,
5: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
4: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
5: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIILM यूनिवर्सिटी कैथल।
3: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
2: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
3: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
2: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वरांजलि, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से।

इसके साथ ही कार्यक्रम स्वरांजलि संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि, ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, जिसे हम विविध भारती से रिले करेंगे।
1: आवाज में

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने

चलिए राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिनी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहां तक कि अपने भाई को भी, इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल नीलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।

सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी, जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें

0: संगीतकार इलैयाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले सभी श्रोताओं को शशि बाला की प्यार भरी नमस्ते। दोस्तों नमस्ते कुरुक्षेत्र हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है। इसके तहत आप हमें फोन कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपने ही पसंद का कोई भी गीत। तो हम फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, जल्दी से हमें फोन मिलाइए और हमसे कीजिए बातचीत, सुनिए अपने ही पसंद का कोई भी गीत। जब तक आप हमें फोन मिलाते हैं तब तक सुनिए हमारी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हमारे साथ रिंकू जो
2: हेलो
0: हाँ जी रिंकू जी ऑनलाइन है। हेलो हेलो रिंकू जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी मैम।
0: रिंकू जी अपने आप ही बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ।
0: कुरुक्षेत्र से ही?
2: हाँ जी।
0: तो कुरुक्षेत्र में क्या करते हैं आप रिंकू जी?
2: मैम कुछ नहीं करता, अभी तो चोट लगी हुई है टांग पे।
0: ओहो, तो हम आपकी बेहतरी की शुभकामनाएं करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हो जाए। और गीत कौन सा सुनेंगे? जी गीत कौन सा सुनोगे?
2: राजा हिंदुस्तानी
0: राजा हिंदुस्तानी का कोई भी गीत सुनवा दे।
2: हाँ जी।
0: आपको सुनवाते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम।

0: हेलो हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल से रमेश कुमार काम्बोज।
0: रमेश कुमार काम्बोज जी, स्वागत है आपका। कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: मैडम एक फूल दो माली।
0: एक फूल दो माली, कौन
1: हाँ
0: सा?
1: जी, ये पर्दा हटा दो, जरा मुकरा दिखा दो।
0: जी, आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम।

0: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8

0: 0890-3436. श्रोताओं, अब आपसे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं खापरवास वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। ये लगभग 82 हेक्टेयर में फैला अभयारण्य कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो पक्षी प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इसे 1991 में आधिकारिक तौर पर वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है, वो ये है कि यहाँ की शांत और खूबसूरत झील जो है उसके किनारे बैठकर बहुत शांति मिलती है। सर्दियों के मौसम में दूर दराज के देशों जैसे साइबेरिया, यूरोप से हजारों मील का सफर तय करके विदेशी मेहमान यहाँ आते हैं, यानी प्रवासी पक्षी यहाँ पर पहुँचते हैं, जो इस झील की रौनक तब उस समय पर देखने लायक होती है। और यहाँ अगर आप जाएं तो लाल सिरे वाली बत्तख भी आपको मिल जाएगी, यूरेशियन विजन और नीले पंखों वाले विजन जैसे खूबसूरत पक्षी यहाँ पर आपको खिलते हुए मिल जाएंगे। और सिर्फ पक्षी ही नहीं, अगर आप खुशकिस्मत हैं तो यहाँ आपको नीलगाय और सियार जैसे जीव भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि पहले एक सुनते हैं संदेश।
1: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
2: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
2: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम जी, तरसेम गांव मुकरपुर ब्लॉक पीपली जिला कुरुक्षेत्र से जी।
0: तरसेम जी, आपने फोन पहले भी किया है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र?
1: नहीं मैडम, फर्स्ट टाइम किया जी।
0: क्या बात है भाई, पहली बार का तो कहते हैं ना आनंद ही कुछ और होता है, तो आपको भी खूब मजा आ रहा होगा।
1: हाँ जी मैडम, बहुत खुशी हुई जी।
0: बहुत खुशी हुई, हमें भी बहुत खुशी हुई कि हमारे नए श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। तो तरसेम जी, गीत कौन सा सुनोगे?
1: मैडम क्रांति फिल्म का जी, आपके ब्रश धरती की रानी कर देंगे।
0: अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए कि
1: मैडम मैं जॉब करता हूँ जी, आज सरकारी छुट्टी है जी।
0: अच्छा,
1: जवाहर नवोदय विद्यालय निवासी में जी।
0: जी, और घर में कौन कौन है?
1: घर में मैडम पत्नी है जी, लड़की जीएनएम कर रही जी, लड़का आईटीआई कर रहा है जी कुछ तरह से।
0: क्या बात है, चलिए आप तक पहुँचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम जी।

0: श्रोताओं, यूं तो हर रोज़ हम कोई ना कोई घटना अपने आसपास होती हुई ज़रूर देखते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि एक चींटी बार बार दीवार पर चढ़ रही थी, गिर रही थी, फिर चढ़ रही थी, गिर रही थी, फिर चढ़ रही थी। तो अचानक से हमारे मन में कबीर दास जी की वो मशहूर पंक्तियाँ गूंज उठी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तेज सिल पर पड़त निशान। भाई कितनी गहरी बात है। सीधा सा मतलब यह है कि बार बार अभ्यास करने से कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं वो वैसा ही कुशलता पूर्वक हो सकता है जैसे आप उसे करना चाहते थे। हम में से बहुत से लोग किसी एक काम को अगर एक या दो बार ट्राई करते हैं फिर कहते हैं भाई हमारे बस का नहीं है ये तो। लेकिन सच बात यह है कि दुनिया में कोई भी टैलेंट बिना प्रैक्टिस के अधूरा है बॉस। तो अब आप ये सोचिए कि सचिन तेंदुलकर को अगर गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है तो ऐसे ही तो नहीं कहा जाता। उन्होंने कितना अभ्यास किया होगा, कितना पसीना बहाया होगा। काम दुनिया में कोई भी हो, पढ़ाई हो या नया हुनर आपने सीखना है, संगीत सीखना है, नृत्य सीखना है या जिंदगी की कोई बड़ी परीक्षा पास करनी है, याद रखिए शुरुआत तो हमेशा जीरो से ही होगी, लेकिन बनेंगे आप हीरो, ये पक्का वादा है। और इसी चीज को आप ध्यान में रखिए और बढ़ते चले जाइए अपनी मंजिल की तरफ। सुनते रहिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब देखते हैं कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: भगवान सिंह जी कैसे हैं?
1: अच्छे हैं दीदी, और आज पूरे एक महीने के बाद कॉल मिलाया दीदी और लग भी गया मेरा।
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ नए श्रोता भी हमसे जुड़ते हैं। अभी पीछे तरसेम जी हमसे जुड़े, वो पिपली से थे, और नए श्रोता है वो हमारे, क्योंकि फोन लाइन्स इतनी व्यस्त रहती हैं नहीं तो, और पुराने श्रोता ही बार बार अगर फोन करते रहेंगे तो नए श्रोताओं को मौका नहीं मिल पाता।
1: दीदी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से 2.5 साल से जुड़ा हूँ और 2.5 साल से कॉल भी मिला रहा हूँ, लेकिन 1.5 महीने का अंतर से मिला था दीदी।
0: बहुत अच्छी बात है, आप जैसे प्रबुद्ध श्रोताओं की हमें जरूरत भी है। चलिए आप ये बताइए गीत कौन सा सुनेंगे
1: दीदी? फिल्म का नाम है लोफर और गाने के बोले कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे, ये वाला गीत सुनना है दीदी।
0: जी आप तक पहुंचाते हैं
1: जी। दीदी कोई मेरे हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप के सदस्यों का कुछ नाम ले सकता हूँ दीदी?
0: बिल्कुल लीजिए।
1: त्रिपाल गोयल जी है, गंगाधर सावनकर जी है, और उदयलाल टेलर जी, तुकाराम यादव जी, शेखर अग्रवाल जी, सुनील झा जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, लोकेन वर्मा जी, केसी सिंह राजपूत जी हैं, करण सिंह पॉल जी हैं, और दिलीप पाहुजा जी, और गौतम राय बोले जी हैं, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सुनील, और धीरज भाई रवाड़ी जी।
0: जी तो आप सबके लिए, सभी दोस्तों के लिए ये गीत।
1: धन्यवाद दीदी
0: फोन करने के लिए, धन्यवाद।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ जी, आपकी आवाज कब आ रही?
0: कम आ रही है और आपकी तो अच्छी खासी आ रही है। हमें तो आपकी आवाज
1: आवाज
0: बहुत अच्छे
1: बहुत कम आ
0: से
1: रही। हाँ
0: कम आ रही है। चलिए, अब देखिए,
1: जी,
0: आप ठीक हुई?
1: समझ
0: हेलो।
1: नहीं आ रही। हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आप अपने बारे में बताइए।
1: मैं अमृतसर काले माजरे से बोल रहा, प्रेम सिंह।
0: प्रेम सिंह जी, गाना कौन सा सुनोगे?
1: धरती के पुकार के फिल्म
0: कौन सा?
1: का, जे हम तुम चोरी से बंदे एक डोरी से जयो का
0: जी, आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

हेलो हेलो, हमारे साथ नमस्ते कुरुक्षेत्र कार्यक्रम में करनाल की संगीता गुलाटी जुड़ी थी, तो उन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो गीत हम आप तक पहुंचाते हैं।

0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सुखबीर सिंह बोल रहा हूँ, बीजेपी ग्राम से।
0: जी, पहली बार फोन किया आपने?
1: फर्स्ट
0: टाइम फोन किया। अरे वाह, आज तो दो नए श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, तो स्वागत है सुखबीर सिंह जी। क्या करते हैं?
1: मैं मेरी एक गुजारिश आपसे, एक सॉन्ग सुनना था।
0: हाँ हाँ,
1: कितनी हसरत है मैं तुमसे दिल लगाने की, टाइम फिल्म का गीत है मैम।
0: जी, गीत तो हम आपको सुनवाएंगे ही, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं मेरा ऑनलाइन काम है, ट्रेडिंग का।
0: अच्छा, ऑनलाइन वर्क,
1: अपना खुद का बिजनेस भी है।
0: जी, और जी। आपने, आपको आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का कैसे पता लगा, कब से सुन रहे हैं कुछ बताइए?
1: मैम काफी समय से सुन रहे हैं इसको।
0: जी,
1: जो हमारा मेरे बिग ब्रो है यहाँ पे, इनके साथ बैठा हूँ मैं आज दुकान पे।
0: अच्छा,
1: तो इन्होंने मेरे को नंबर दिया भी, सर आप एक बार फोन लगाओ यहाँ पे और आज फरमेश का जो गीत है वो सुनेंगे आज।
0: तो क्या नाम है आपके दोस्त का?
1: मास्टर कृष्ण जी हैं।
0: जी,
1: टेलर का काम करते हैं मैम ये।
0: जी जी जी, तो कृष्ण जी को भी हमारा प्रणाम, नमस्ते। और गीत जो आपने हमसे फरमाइश की है वो आप तक पहुँचाते हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद।

0: सिर्फ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, जिसे हम विविध भारती से रिले करेंगे।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कुछ ऐसे गाने जिनमें हैं बारिश के छींटे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बोल हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत आपने सुना।
1: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादवां भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे। बिलकती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है, न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।
0: मौसम का झोंका गुलजार की आवाज में आपने सुना, उनका ही ये कलाम ये कब आते हो एल्बम से था। और अब भूपिंदर की आवाज़।

0: चंदनदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के

0: व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यादों की महफिल।

शैलेंद्र के बोल थे एसटी बर्मन की तर्ज, फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से। अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम बालिका वधू।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। अशोक भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजें, गुलशन बावरा, राहुल देव बर्मन, सत्ते पे सत्ता।

आनंद बख्शी के बोल थे रेशमा की आवाज, फिल्म का नाम था हीरो। अमिताभ बच्चन की आवाज शिवहरी की तरह से, फिल्म का नाम सिलसिला।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में हम एक इबारत, एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं।

0: और वो टेक्स्ट कार्यक्रम के काफी पहले पोस्ट कर दी जाती है, आज भी कर दी गई है। तो आज की इबारत आपको बता दें, बदरा की गागरी में ढेर सारा पानी, मन को रंगीला करे बारिश की कहानी, इन हवाओं में चलो उड़ चले कहीं, ना आसमां का पता हो ना दिखे जमी, ऐसे मौसम में जाने क्या क्या याद आए, कभी मन मुस्कुराए कभी आंख भर जाए, दिन में एक बजे जब मिलेंगे हम, गीतों का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे हम। भाई इस टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं और इन तमाम रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम का सफर हमें आगे तय करना है। एक श्रोता है जिन्होंने कविता का जवाब कविता से दिया है। वो लिखते हैं, इबारत की इजाद वाले स्वयं पधारे हैं, आज सफरे कारवां के भाग्य न्यारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीला सफर में गानों की बौछार होने लगी है, जो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप कानों में एक मधुर आवाज घोल रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट। एक श्रोता है जिनका अंदाजा है कि आज तो गागरी वाला मशहूर गाना बजेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि और कोई गीत हो ना हो लेकिन ये गाना जरूर होना चाहिए कि रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, फिर से आई यो बदरा विदेशी और जब जब बहार आई। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज फिर बारिश की कहानी में पानी, कैसा है आपका रंग जिंदगी का शोर, बारिश के तारों पर आई बारिश, याद है वो कागज की नाव वो बारिश का पानी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर लिस्ट भेजी है, यानी इस इबारत में जितने शब्द हैं उन शब्दों पर गाने, और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर गाने मैच कर रहे हैं। जो शब्द इन्होंने चुने हैं, बदरा, गागरी, पानी, मन, रंगीला, बारिश, हवा, उड़ आसमान जमीन, ओ हो हो, 20 शब्द चुन लिए हैं। क्या बात है, क्या मेहनत है, सलाम। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों पर अपनी बातें कही हैं। आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी इस गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज। क्या आपका गाना हमारे गाने से मैच किया? पर हां एक और बात, आपके शहर में बादल सिर्फ छाए हैं या बरस भी रहे हैं, और जब छाते हैं बदरा आपके मन में आती हैं कौन सी बातें? जल्दी से विविध भारती के फेसबुक पोस्ट पर जाइए और कीजिए कमेंट। विविध भारती का फेसबुक पोस्ट खोजने के लिए फेसबुक पर सर्च बॉक्स में लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, फिर पहुंचिए सुरीला सफर की पोस्ट पर। देखिए बादल छा गए हैं, कचरा घुलने लगा है, घटाएं बरसने लगी हैं। इस गाने में महिला स्वर किस गायिका का है ये बताइए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए यह लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा।

0: वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पूर्ण परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पूर्ण परीक्षा 21 जून को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपए शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा विजन 2047 आगामी 5 वर्षों के रोडमैप एवं कार्य योजना की समीक्षा की। बैठक में उच्च शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण, रोजगार उन्मुख और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए चल रही योजनाओं, बजट घोषणाओं तथा मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। अंबाला शहर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एवं एलिंको के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष मूल्यांकन एवं पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लेकर विभिन्न सहायक उपकरणों के लिए अपना पंजीकरण कराया। एलिंको के प्रतिनिधि डॉ. मोहित ने बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक उपक्रम एलिंको द्वारा एडीपी योजना और राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: एडिप स्कीम के तहत जितने भी दिव्यांगजन है उनको ट्राईसाइकिल, बैटरी वाली ट्राईसाइकिल और क्रचेस वगैरह दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इम्प ऑन द स्पॉट असेसमेंट कर रहे हैं। दिव्यांगजन के साथ साथ सीनियर सिटीजन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। 60 साल से जो ऊपर है उनको हम कानों की मशीन, खड़ी, कमर की बेल्ट, घुटने की बेल्ट, व्हील चेयर, कुशन वगैरह हम प्रयोग कॉस्ट दे रहे हैं। हम 20 से 25 लाख का सामान राष्ट्रीय योजना के तहत देंगे।
0: उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके जीवन को अधिक सुगम और सम्मानजनक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। कैथल में आज सुबह पुलिस और बावरिया गिरोह के 2 कुख्यात बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुंडरी क्षेत्र के गांव जामबा सिकंदरखेड़ी मार्ग पर हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये सुदास के साथ हेमांती शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और ये खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है।

हमारी एक श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहां सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहां से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसे, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं, सफेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की एक कविता, मजा आ गया आपने कविता लिखी। फिलीपींस से एक श्रोता का मैसेज ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इसकी इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहां पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये हैं हमारे तमाम श्रोता जो अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहाँ चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज़ चल रही है, वो है तेज हवा। और हवाओं से मुझे पतंग की याद आ गई। चलिए आज पतंगबाजी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करें। जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए, पतंगबाजी से जुड़ी जो आपकी सबसे शानदार याद है वो लिख भेजिए। इस गाने के फौरन बाद पतंगबाजी वाले सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं। तो शुरू हो जाइए, किसने किसकी पतंग काटी, किसने मांझा सूता, किसने पेंच लड़ाए और किसने बाजार से ताव लाकर पतंग बनाई।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। और पतंगबाजी को लेकर कितने सारे कमेंट्स आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का अक्सर पतंग पर एक प्रेम पत्र लिखकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता था, वो अद्भुत दृश्य होता था। 90 के दशक में प्रेम पत्र का बड़ा क्रेज था। ये कमेंट। और इसके अलावा ये कमेंट कि हमारे गुजरात में पतंग मशहूर खंबात के बरोड़ा के जहां बनता है, हमारे गांव में दिवाली के बाद पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि करीब 50 साल बाद इस संक्रांति में मेरे मुझसे 2 साल बड़ा भाई, जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा सूता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चकरी जरूर पकड़ कर रखते थे। रफी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मजा आता रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती हैं कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़कर पीसकर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो ज़रा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं। मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूनावाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल ली और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था न जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा, ना आसमां का पता हो न जमी का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति

14 जनवरी को हमारे यहां पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहां कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मजे लें। इसके अलावा एक और श्रोता है, वो लिख रही हैं कि क्या बोलें, ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतजार में हैं। और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे, तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक जरा आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ, जो बहुत ही झुमा देने वाला गाना है। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के गीतकार का नाम बताइएगा।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मजे लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो सूरत गुजरात में हैं और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहाँ बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक ज़मीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मज़ा आता था और जब पतंग कटकर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गाँव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और ख़ास त्योहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पींच लड़ाने में मजा तो बहुत आता था, लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई कि अब हम चल रहे हैं आसमां के नीचे।

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होंठों पर, आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है? आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है?

भाई ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की और अभी भी जब भी कोई गाना ख़त्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं। ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना लपक झपक तू आर्य बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी। एक और श्रोता हैं जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही है। देखिए किसने तरह के गाने हमारे अलग अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक श्रोता लिख रही हैं कि इतना समय ही कहाँ कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाई गर्मी उफ गर्मी यही उनकी जुबान पर है। चलिए भाई ठीक है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबां पर सुबह से है नैनों में पतरा छाए।

इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि अकोला में हम शाम को समय निकाल कर बहुत पतंग उड़ाया करते थे, और इसके अलावा कई और श्रोता हैं जो बारिश की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बारिश के इंतज़ार में हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग उड़ाने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका मांझे से हाथ ना कटा हो। अभी कुछ साल पहले एक हृदय विदारक घटना सुनी थी कि मांझे से किसी व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो गया था। उसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शादी के बाद हम पहली बार मूवी देखने गए, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और हम दोनों के मुंह से निकला रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। आज भी ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो, चाहे बादल छाए हो, चाहे आप गर्मी से हो हलाकान या परेशान, पर कम से कम ये गाना तो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो आपके होंठों पर कौन सी पंक्तियां आती हैं।

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताजा हो गई हैं, कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती है, बरखा रानी जरा जम के बरसो हमारे ग्वालियर में भी, इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाजें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। एक श्रोता को ये कन्फ्यूजन हुआ कि ये त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये हैं जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर आगे बढ़कर जरा देखें, एक श्रोताएं लिखते हैं कि हमने कोलकाता में भी पतंग उड़ाई थी, विक्टोरिया मैदान में पतंगबाजी देखी। जवानी में बहुत लंबे लंबे पींच लगाए हैं, पतंग बहुत छोटी सी नजर आती थी जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ा करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दसवीं की बात है, बारिश का मौसम था, शाम का समय था जब मैं कोचिंग जा रहा था। रोड के किनारे काफी गहरी नाली खुदी थी, उसमें पानी भर गया था, बरसात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी चप्पल इस पानी में धो लेता हूं। लेकिन जब मैं उसमें डूब गया, मेरा रजिस्टर छतरी के ऊपर तान में रखा हुआ था और मैं पूरा भीग गया था, लेकिन मेरी छतरी और मेरा रजिस्टर बच गया।

इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मांझे पर हम चावल के आटे का घोल लगाते थे, मराठी में खड़ कहते हैं, इसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख कहते हैं कि कहाँ गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता है इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज़ की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता है, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊँची छत से गिर कर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओहो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज़्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियाँ एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार, पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर, बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीग कर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताज़ा हो गई हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये

भाई ये गाना खत्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना, कागज की कश्तियों का वो पुराना, वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, वो सौंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने पहना है ये रंग सुरीला। सुंदर कविता है और आप सभी ने जिस तरह की सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: Ireland in the first T20 international of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. The series marks the start of a new T20 cycle for India, who will be playing its first T20 international since lifting the T20 World Cup. Captain Shreyas Iyer will lead a young squad that includes 15-year-old batting prodigy Vaibhav Suryavanshi. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान. कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा. उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया. भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए. इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया. T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से. टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें. और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया. अब समाचार विस्तार से. गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है. उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की. श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की.
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है. आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय. और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए.
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं. उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा.
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं. वो नेटवर्क आधारित बन

0: चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति

0: और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
1: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराय मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
2: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला

0: मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

0: मोहम्मद रफी आवाज में ये गोदान फिल्म का गाना था। अनजान के बोल थे, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा

0: ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है? हाँ, शीला जी
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं।

0: करती रहती हैं। मुझे एक बात
1: हाँ
0: बताइए,
1: मैम वो
0: दिल्ली
1: काम
0: के क्या
1: करती हूँ।
0: हाल चाल हैं?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप धूप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर
1: हाँ
0: निकलते वक्त छाता
1: पानी
0: लेके
1: पी
0: चलें।
1: लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है वो लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ,
0: क्या बात है,
1: विविध
0: शुक्रिया
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी जी
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी, आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ।

0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में
1: जी
0: हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई हैं?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और 3-4 आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ, तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला। तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
1: जी
0: के साथ
1: हाँ,
0: खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए, किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए। जी
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम।

0: पूनम जी क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: में तो मैडम बस हाउस वाइफ है मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने ज़माने में, और ये कला जो
1: हाँ
0: होती है ना, अद्भुत है ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी लुधियाना
1: जी
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया मतलब अपने बारिश होते हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी, जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते, कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी, मैं श्वेता भारती, जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो?
0: जी हम भी मजे में हैं, और आपसे बात करके

0: और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी, घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है।
1: जी
0: और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज़्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज़्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में?
1: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। मैं रेडियो सुनती हूँ, विविध
0: गाती भी है?
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी,
0: जी, और गाती भी हैं आप?
1: जी दीदी गाती हूँ। अच्छा,
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाओ।
0: सुनाइए।
1: देवी।

0: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते
1: जी दे
0: गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
1: दे
0: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: फिर जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी। कोई
0: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: भी सुना दीजिए।
0: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी कलाओं
1: जी
0: में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी हैं या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हम हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला, उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी,
0: ये
1: ऐसा
0: बहुत
1: मेरा
0: सही
1: मानना।
0: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर, अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे, तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सही जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
1: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज़ है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ?

0: पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है वहाँ पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या
1: और
0: बात है,
1: हाँ हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उन उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी
0: आप क्या काम करती है वहाँ पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ
0: वहाँ जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है
0: तो कैसा लग रहा
1: और
0: है
1: यह
0: आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है। तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
1: जी
0: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको भी वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो
1: जी
0: बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, कौन
1: हेलो सहेली,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है, और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ, जी।
0: और आज आपकी आवाज़ में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है, और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज़ में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ,
0: जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
1: जी
0: किसी को किसी चीज़ में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज़ में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत
1: जी
0: अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में
1: जी
0: हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: जो
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है, और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी, जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना गुनगुना के बताइए आप।

0: हेलो सहेली, कौन
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू?
0: सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से।
0: हिसार हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है, और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती हैं, व्यायाम करती हैं?
1: थोड़ा बहुत बस घर के कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखी जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत की जिंदगी, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी ही खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही हैं, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी। मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक कोर्स किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी
1: और
0: बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप
1: जी
0: तंदुरुस्त जीवन जी रहे हैं।

0: है। तो हर महिला को ऐसे ही करना चाहिए कि कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है। अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। और जब
1: जी
0: हम योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये
1: में।
0: गीत।

0: को।
1: सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार हैं, 400-24662, फिर से 400-24662, दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 28670288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फ़ोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारे सखियों के फ़ोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता।

0: संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सोने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहाँ लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम बाजू।

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था। हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सब की व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

गुजर जाए दिन। तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था, उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे, रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता, यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए कुछ सूझ नहीं रहा था, ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलभेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी, जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि सौ राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहाँ दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

झीला झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किप

तू में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहें, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहें।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे, आगे बढ़ गए। कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी कुछ नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर

0: फायदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो
3: अभी आप सुने थे विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिए।

शाम 5:30 बजे युवाणी कार्यक्रम में आज जानकारी दी जाएगी मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। इसके अलावा जानकारी दी जाएगी यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। साथ ही छत्रपति साहू महाराज जयंती विषय पर भी आपको जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे विशाल यादव।

गीता संदेश कार्यक्रम में आज शाम 6:20 पर आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 से 5 तक की व्याख्या करेंगे डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय जवान सुनिए शाम 7:30 बजे। गैर फिल्मी रचनाएं हम पेश करेंगे गुलदस्ता कार्यक्रम में शाम 7:45 पर।

आपका मनपसंद कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत हम लेकर आएंगे रात 8 बजे। विविध भारती से कार्यक्रम सुनिए रात 9:15 पर। कार्यक्रम आपके लिए छाया गीत आप सुनेंगे रात 9:30। ये दोनों ही कार्यक्रम हम विविध भारती केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

फिल्म गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम चांदनी रातें होगा रात 10 बजे। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा हमारे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर। समाचार होंगे शाम 6 बजे 6:05 पर, उसके बाद समाचार रिले किए जाएंगे रात 8:45 पर, रात 9 बजे, रात्रि 11 बजे और 11:05 पर। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से शाम 6:10 पर रिले किए जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। शाम के 5:05 हुए हैं, आइए सुने कार्यक्रम गाने नए पुराने। गाने नए पुराने कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। दोस्तों, कुछ गीत कुछ सुरों में नहीं बजते, वे रिश्तों की गर्माहट, अपनेपन की मिठास और दिल के सच्चे जज्बात लेकर आते हैं। आपका मनपसंद ये कार्यक्रम गाने नए पुराने हम लेकर आते हैं रोज। और दोस्तों, आपसे कहना चाहते हैं कि जहां एक दिल अपने एहसासों को छोटा सा नजराना लेकर सामने आता है और कहता है इसे ठुकराना मत, इसमें सच्ची मोहब्बत और दोस्ती की खुशबू है। और जब किसी अपने की खुशी अपनी खुशी बन जाए, जब किसी के सपने अपने से लगने लगे, तभी दिल के तारों से निकलता है ऐसा तराना। दोस्तों, मुस्कुराहटों, यादों और अपनत्व से भरे सुरीले सफर में चलते हैं और सुनते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का ये बड़ा प्यारा गीत। और ये गाना हम लेकर आए हैं आपके लिए किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरूर सुल्तानपुरी की लिखी रचना को संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

श्रोता दोस्तों, इश्क की राहें हमेशा फूलों से नहीं सजी होती। कभी इसमें चाहत होती है तो कभी इंतजार, और कभी ऐसे जज्बात भी जो दिल को जलाकर उसे और गहरा बना देते हैं। कोई शायर ये कहता है कि मोहब्बत जब हद से गुजरती है तो शिकायत नहीं करती, बस खामोश होकर अपनी कहानी कहती है। किसी शायर ने यह भी कहा कि इश्क आग भी है और उजाला भी, जो इसमें उतर गया वो पहले जैसा नहीं रहता। दोस्तों, जब दिल के एहसास सुरों में ढल जाएं तो हर धड़कन एक अफसाना बन जाती है। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गाना ऐसा है कि जहां प्यार है तड़प है इंतजार है, और दिल की गहराइयों से निकली हुई एक पुकार है। आइए इन एहसासों की तपिश और मोहब्बत की रोशनी के साथ सुनते हैं ये बहुत प्यारा गीत।

श्रोता दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से चलते हैं। जहाँ एक नाम की बहुत बड़ी अहमियत होती है, और अगर हम देखें तो एक मुस्कान पूरी दुनिया से प्यारी लगने लगती है। मोहब्बत जब सच्ची हो तो उसमें कोई शोर नहीं होता, बस एक अपनापन होता है जो हर मुलाकात को खास बना देता है। जब किसी की याद शाम बन जाती है ना, तो कभी उसकी आवाज़ दिल का सबसे खूबसूरत गीत हमें महसूस होती है। कोई शायर कहता है कि तेरा नाम लिया तो मौसम भी महकने लगा, तेरा नाम लिया तो मौसम भी महकने लगा, दिल की खामोशी में कोई गीत चमकने लगा। तू पास हो या दूर कहीं, तेरा एहसास ही मेरी दुनिया बनने लगा। आइए दोस्तों, अब एक ऐसा गीत सुनते हैं जो सीधे कानों के रास्ते आपके दिल तक पहुंचेगा। किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल की आवाज में गाना है, वर्मा मलिक ने गीत लिखा, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

शत दोस्त मोहब्बत जब पूरी नहीं होती तो उसके हिस्से में सिर्फ दूरी नहीं आती, कुछ सवाल, कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें भी रह जाती हैं। कभी कभी दिल किसी को रोकता नहीं, बस इतना कहता है कि आज जो साथ छोड़ रही हो, कल शायद यही एहसास तुम्हें फिर से मेरी ओर ले आए। किसी शायर ने कहा कि जो दिल की कीमत नहीं समझ पाया वो एक दिन यादों में लौट आएगा, वक्त जब एहसासों का हिसाब करेगा तब शायद वो भी पछताएगा। दोस्तों मोहब्बत का दर्द कोई शोर नहीं करता, वो चुपचाप दिल में उतरता है और फिर किसी गीत की तरह बार बार यादों में बजता रहता है, जैसे ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, समय गुजरता रहता है। आप देखने कि ज़िंदगी का सफ़र अकेले तय नहीं होता। हर मोड़ पर किसी अपने का साथ, हर कठिन राह पर किसी का भरोसा और हर खुशी में किसी की मुस्कान की हमें ज़रूरत महसूस होती है। जीवन एक रथ की तरह है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए दो पहियों का साथ संतुलन और विश्वास जरूरी होता है। एक पहिया तेज हो और दूसरा थम जाए तो मंजिलें दूर हो जाती हैं, लेकिन जब कदम और इरादे साथ हों तो राहें आसान लगने लगती हैं। आइए कुछ ऐसे ही एहसासों से भरा ये गीत सुनते हैं, और ये गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं यशोदास आशा भोसले की आवाज में, फिल्म अगर से। गुलशन बाबरा के लिखा ये गाना है, संगीतकार सोनी कौमी।

श्रोता दोस्तों, संगीत केवल सुरों का मेल नहीं होता, ये भावनाओं की वो भाषा है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जिंदगी की मिठास आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे, इस कार्यक्रम से आपसे विदा लेते हैं। अपने दोस्त प्रदीप को गाने नए पुराने कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुने थे गाने नए पुराने कार्यक्रम एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 5:30 बजे हैं। आइए सुने युववाणी कार्यक्रम।

युवाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी युवा साथियों को आपके दोस्त विशाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज कार्यक्रम में हम आप सभी को सुनवाएंगे आपकी फरमाइशी गीत, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है युवा फरमाइश। साथ ही आप सभी को जानकारी दी जाएगी छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती पर, इसके साथ ही मुहर्रम पर भी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमें आई है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। फरमाइश करते हैं तुलसी मस्किन, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा। इसके साथ ही एक और फरमाइश करता है चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु। आइए आप सभी को सुनवाई चलते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
0: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
2: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
0: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
2: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र,
0: 8708903436।
3: आइए दोस्तों, आप सभी को जानकारी दिए चलते हैं। मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। दोस्तों, ये दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक जीवन पर गंभीर प्रभाव डालता है। इससे स्वास्थ्य खराब होता है, परिवार टूटते हैं, अपराध बढ़ते हैं और युवाओं का भविष्य अंधकार में हो जाता है। दोस्तों, आज के समय में युवाओं को नशे की लत से बचाना समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए परिवार, विद्यालय, समाज और सरकार सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, ये दिवस हमें संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करेंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है चकला बाजार शहर समाना पंजाब से। फरमाइश करता है संगीता, महक, सुनीता, आरजू, हसमुखलाल, बुलबुल। आइए आप सभी को सुनाना चलते हैं कि फरमाइश पर ये गीत है।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIILM विश्वविद्यालय में,
3: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
2: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIILM यूनिवर्सिटी कैथल।
4: आइए दोस्तों, आप सभी को जानकारी दे चलते हैं छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती पर। दोस्तों, कोल्हापुर रियासत के महान शासक, समाज सुधारक और शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। उन्होंने अपना जीवन समाज के कमजोर, वंचित और

दोस्तों, उनके शासनकाल में पिछले वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था भी लागू की गई, जो सामाजिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल थी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है गांव मुंडाखेड़ा कुरुक्षेत्र से। फरमाइश करता है अमनप्रीत, कविता कश्यप, पूनम, जय सिंह। आइए आप सभी को सुना चलते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत है।

अरे दोस्तों, आप सभी को जानकारी दिए चलते हैं मुहर्रम पर। दोस्तों, मुहर्रम इस्लाम धर्म का पहला महीना है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख, जिसे आशूरा कहा जाता है, विशेष महत्व रखती है और इस दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कर्बला का युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका ये बलिदान सत्य, न्याय, मानवता और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, मुहर्रम केवल शोक का अवसर नहीं, बल्कि ये हमें सत्य के मार्ग पर चलने, अन्याय का विरोध करने और मानवता की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर लोग इमाम हुसैन के जीवन और उनके आदर्शों को याद करते हैं। कई स्थानों पर ताजिए निकाले जाते हैं, मजलिस आयोजित की जाती है और उनकी शहादत को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। तो दोस्तों

थी जानकारी मुहर्रम पर। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है शीतल रेडियो श्रोता संघ, ग्राम बहरामपुर टेमा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। फरमाइश करता है डॉक्टर तिलक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित, सचिन। आइए आप सभी को सुना चलते हैं इनकी फरमाइश पर यह गीत है।

आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है कोल्हापुर महाराष्ट्र से। फरमाइश करता है विजय चौहान, तेजस्विनी, इंदुरकर, शौर्य, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत। आइए आप सभी को सुनाए चलते हैं इन सभी की फरमाइश पर आज का ये अंतिम गीत है।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ युवा फरमाइश और युवाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए अपने दोस्त विशाल को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ क्षण में हम चलेंगे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। शाम 6:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्यबल बनाने और नशा पीड़ितों के लिए और नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने रेवाड़ी के गांव बुटपुर में राव मोहर सिंह जैव विविधता पार्क और अमृत सरोवर का शिलान्यास किया और हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नशाग्रस्त लोगों को मानसिक तौर पर मजबूत करने और उनके पुनर्वास के लिए काम करने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। श्री शाह आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृहमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। श्री शाह ने कहा कि नशा मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 वर्ष का रोडमैप 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित रहेगा।
1: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम और आधुनिक बनाने के लिए 4th स्तंभ की रचना की गई है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सशक्त संयुक्त कार्यबल बनाया जाएगा जो नशे की बिक्री को रोकने और इसके कारोबार में लगे व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साथ ही नशा पीड़ितों के लिए प्रदेश में और अधिक नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन 2047 के तहत सामाजिक न्याय तथा अधिकार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय सेवा विभाग के अगले 5 साल की कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित गण को नशे की रोकथाम में सहयोग देने और परिवार, समाज व देश को नशा मुक्त करने में सहयोग देने की शपथ भी दिलवाई।
2: युवा किसी भी राष्ट्र की उपजा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए।
0: श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में नशे पर पूर्ण रोक लगाने के लिए इसकी बिक्री के नेटवर्क को तोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पंचायत और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी वाला यह विशेष कार्यबल ऐसे स्थानों को चिन्हित करेगा जहां नशे की बिक्री होती हो और नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क आकाशवाणी समाचार

0: वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के वन पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने आज रेवाड़ी के गांव बुढ़पुर में राव मोहर सिंह जैव विविधता पार्क और अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। श्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि 30 एकड़ में विकसित होने वाले इस पार्क में 150 से अधिक प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इनमें औषधीय पौधे भी रोपित किए जाएंगे। पार्क में ओपन जिम के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी होंगी। कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों से पार्क विकसित करने में भरपूर सहयोग देने का आह्वान करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम एक पेड़ माँ के नाम में भागीदार बने और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर उनके पेड़ बनने तक उनकी देखभाल भी करें। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर हिसार में नशा मुक्त भारत पखवाड़े का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नशे के कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है।
1: नशा मुक्त भारत अभियान नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान हमने चला रखा है पूरे देश के अंदर। नशे से जुड़े हुए लोगों को जहां हम सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रहे हैं, वहां पर जो हमारे बच्चे नशे से ग्रस्त हैं, उनका बचाव भी हो, उनका पुनर्वास भी हो और वो मुख्य धारा में जुड़कर देश और समाज को मजबूती से काम करें, इस प्रयास में हम लगे। सरकार के प्रयास जितने होते हैं वो होते हैं, परंतु जब तक समाज का योगदान न मिले इससे लड़ना इतना आसान नहीं है।
0: उन्होंने सभी से इस मुहिम में योगदान देने और नशे से ग्रस्त लोगों के पुनर्वास में सहयोग देने की अपील की।
1: जो नशे के लोग चपेट में आ रहे हैं उसका एक बीमार की तरह इलाज कराना पड़ेगा, ना कि एक आदत छुड़वाने के लिए उसके ऊपर कोई मारपीट करें, उसको दरवाजे के पीछे बंद रखें या चैन से बांध दें, इस प्रकार का नहीं चलेगा। जब उसको ये दिमाग में बिठा देंगे कि आप बीमार हो, आप हैबिचुअल नहीं, आप छोड़ भी सकते, उनको इस बात की प्रेरणा, उनको मनोबल देना पड़ेगा।
0: भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प को साकार करते हुए वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को नए आयाम दिए हैं। वे आज हिसार में आयोजित अभिनंदन समारोह में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज भारत केवल दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला देश नहीं, बल्कि विश्व को नई दिशा दिखाने वाला राष्ट्र बन चुका है। बाद में एक पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और बूथ पर जाकर काम करना संगठन के लिए बहुत जरूरी है।
2: SIR का काम पूरे प्रदेश में चालू हो चुका है। जो पहले वाली वोटर लिस्ट थी, दैट इज नल एंड वॉइड नाउ। जितने लोग एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे, अपने दो फोटोज देंगे और साइन करके देंगे, तभी उनकी नई वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में वोट आएगी। तो उसके लिए हमारी सरकार अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन संगठन को भी साथ में सहयोग करना पड़ेगा।
0: हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए नशा मुक्त हरियाणा अभियान के समापन पर फरीदाबाद में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय हिमाद्री कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। 11 जून को सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से शुरू हुई यह 16 दिवसीय नशा विरोधी जागरूकता यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज फरीदाबाद पहुंची। हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के जागरूकता एवं पुनर्वास प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने कहा,
3: नशा समाज के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, अभी तो मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। हमें नशे को ना कहने की आदत डाल लेना चाहिए। नशा किसी भी रूप में मनुष्य के लिए स्वीकार्य नहीं है। हमारा शरीर बना ही नहीं नशों के लिए। हमारा शरीर तो बिल्कुल पाक पवित्र है। हमें नशे से दूर रहकर अच्छा जीवन जीना चाहिए।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्यबल बनाने और नशा पीड़ितों के लिए और नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। हरियाणा के वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने रेवाड़ी के गांव बुढ़पुर में

0: अब मोहर सिंह जैव विविधता पार्क और अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। गीता संदेश कार्यक्रम में आज सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की श्लोक संख्या 3 से 5 तक की व्याख्या। व्याख्याकार हैं डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी।
2: नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 से आगे की व्याख्या। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक योग की सिद्धि के लिए यत्न करता है, और जो लोग यत्न करते हुए योग की सिद्धि कर लेते हैं उनमें से कोई एक ही मुझे तात्विक रूप में जान पाता है। हे पार्थ, दुर्योधन, कंस, शिशुपाल, जरासंध, सरीखे, सैकड़ों मनुष्य तो मुझसे द्वेष करते हैं। मैं धर्मोद्धार तथा महाभारत साम्राज्य स्थापना द्वारा धर्म साम्राज्य स्थापना रूप जिस महान उद्देश्य को लेकर आया हूँ उसे कुछ नहीं समझते, यहाँ तक कि समझने का यत्न भी नहीं करते। फिर जो यत्न करते हैं वे मुझ में आसक्त मना होकर मेरे गीत गाने लगते हैं। मैं जो कुछ कर रहा हूँ पार्थ, वह सब प्रभु भक्ति के बल पर कर रहा हूँ। उस परमपिता परमात्मा अर्थात उस ईश्वर की प्रेरणा से उसका निमित्त मात्र अर्थात कारण मात्र बनकर कर रहा हूँ, यह वे भूल जाते हैं। हे अर्जुन, जिन्होंने केवल मुझे जाना उन्होंने मेरा कुछ नहीं जाना। जिन्होंने मेरे नेतृत्व के कारण रूप प्रभु समर्पण को, मेरे ईश्वर प्रणिधान को जाना है उन्होंने ही मेरा तत्व जाना है। इसलिए कहता हूँ, सहस्रों मनुष्यों में कोई कोई तो सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वालों में कोई मुझे तत्वतः प्रभु सेवक के रूप में जानता है। अधिकांश तो मुझे ही प्रभु कहने लगते हैं। यह घटना महापुरुषों के साथ प्राय घटित होती रहती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भक्त उन्हें परमेश्वर कहने लगे तो उन्होंने गर्ज कर कहा, जो नर मोहे परमेश्वर उच रही, ते नर घोर नरक में पर रही, हम हैं परम पुरुष के दासा, देखन आए जगत तमाशा। इसलिए जो महापुरुषों को प्रभु जानता है वह तत्वज्ञानी नहीं, तत्वज्ञानी वही है जो उन्हें प्रभु भक्त तथा प्रभु सेवक समझता है। भगवान श्री कृष्ण ने ऋग्वेद के तत्व दर्शन को यहाँ प्रतिपादित किया है। ऋग्वेद के अनुसार नम इंद्रेण सख्यम वियोषत, अर्थात मेरी परमात्मा से मित्रता न टूटे। वह पुरुषार्थी की रक्षा करता है, सारे संसार की प्रतिमूर्ति है। ऋग्वेद के अनुसार 6ठा मंडल 47वां सूक्त 18वां मंत्र रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, अर्थात संसार के समग्र रूपों में उस ईश का रूप समाया हुआ है। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार न दिष्टम अप्यतिक्रांतुम एशो मर्त्यः कथंचन, महाभारत भी इसी की पुष्टि करता है, मनुष्य किसी भी प्रकार दैव का अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए हमें हमेशा प्रभु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थी लोग ही ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। अतः सभी सांसारिक कर्म करते समय सत्य का आचरण करें, ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें। कठोपनिषद में यमाचार्य नचिकेता को उपदेश देते हुए इसी का तात्विक विवेचन करते हुए कहते हैं, 13वें श्लोक 6ठी वल्ली में कहते हैं, अस्तित्वोपलब्ध व्यस्तत्व भावे नचो भयो हो अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति, अर्थात वह ब्रह्म उसकी सत्ता है अथवा नहीं है। इन दोनों की तात्विक विवेचना करके अस्ति इति वह है यह कहकर ही उसे पाया जाता है। जिसने अस्ति वह है इस प्रकार उसे प्राप्त कर लिया है, उसका तात्विक विवेचन शुद्ध विवेचन है। अब श्री कृष्ण चंद्र महाराज के 3 घटक उन्हीं के शब्दों में सुनिए। प्रथम घटक, भूमिरापो

मेरे तीन घटकों में से प्रथम जड़ प्रकृति है, जिसके ये आठ भाग हैं, भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश। ये पांच भूत छठा मन, सातवीं बुद्धि तथा आठवां अहंकार। यहाँ जगत में ईश्वर का स्वरूप तथा उसका दर्शन, इसका वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, मेरा रूप, मेरी प्रकृति इन आठ में बटा हुआ है, अर्थात विभक्त है। पांचवें श्लोक में कहते हैं,

0: जगत। हे महाबाहो, मेरे समग्र रूप को बनाने वाली दूसरी प्रकृति अर्थात घटक यह है जो तेरे सामने प्रत्यक्ष है, अर्थात वह जीव जिसने पूर्व जन्म में विवस्वान को योग का उपदेश दिया था और इस जन्म में तुझे उपदेश दे रहा हूँ। परंतु अर्जुन, प्रभु भक्तों का देह अथवा जीवन कार्य तो कुछ भी नहीं, वे सबसे बड़ा स्थान तो उस महाशक्ति को देते हैं जिसके सामने वह अपने आप को तुच्छाति तुच्छ मानते हैं। मैं तो अपरा इयम में आ गया, किंतु मेरे समग्र रूप के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण इस जीव से भी भिन्न एक परम प्रकृति है जो जीव मात्र को जीवन देती है, जिसने इस सारे जगत को धारण किया हुआ है। यह आठ प्रकार के भेदों वाला मेरा अपर रूप है, जड़ रूप है। हे महाबाहु, मेरे पर रूप को, चेतन जीव रूप को भी जान ले जो अपर रूप से भिन्न है और जिसके द्वारा यह संसार धारण किया जाता है। अर्थात हे पार्थ, संसार में जड़ तथा चेतन ये दो तत्व दिखलाई देते हैं। जड़ का रूप अष्टधा प्रकृति है, चेतन का रूप संसार के अनंत जीव है। ये दोनों मिलकर ईश्वर का रूप बनते हैं। इनमें हम ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। जड़ तथा चेतन ये दोनों मिलकर ईश्वर का शरीर बनते हैं। जड़ चेतन रूप इस सृष्टि का दर्शन ही ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन है। इसमें जड़ प्रकृति ईश्वर का अपर रूप है, चेतन जीव ईश्वर का पर रूप है। ईश्वर का निज रूप पर तथा अपर से परे है। प्रिय श्रोताओं, आज आपने गीता संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत गीता के सातवें अध्याय के तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोकों की व्याख्या सुनी। धन्यवाद।
1: ये था हमारा आज का गीता संदेश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय के श्लोक संख्या 3 से 5 तक की व्याख्या। व्याख्या प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है।

गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। पंछियों के लिए अपने घर की छतों पर पानी जरूर रखें। सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति सीमा का ख्याल रखें और अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचें। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:30 बजे हैं। आइए सुनिए अन्नदाता कार्यक्रम।

कार्यक्रम अनदाता सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, आज कार्यक्रम में हम जो चर्चाएं लेकर आए हैं, बातचीत करेंगे भाई दुधारू पशुओं में गर्भपात की समस्या व समाधान के बारे में जानकारी देगी। और इसी तरह नई फसल नई उमंग में आज जो हम चर्चा का विषय लेकर आए हैं, तिल की बिजाई और भाई प्राकृतिक खेती की बात करेंगे। मनोरंजन तो हम जरूर आपको सुनाते हैं, लेकिन भाई कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम आज के कृषि प्रश्न से करते हैं। और आज का जो कृषि प्रश्न है, राज्य में कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है? प्रश्न एक बार फिर से, राज्य में कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है? भाई उस जिले का नाम बताना है जो सर्वाधिक भाई ये खुम्बी में आगे है। और इसका आप सही जवाब हमारे को 9466021336 यानी 9466021336 पर SMS या WhatsApp के माध्यम से आप हमारे को 6:50 से पहले ज़रूर भेजिए। और भाई जो सही जवाब दे गए उस बहन भाई का भाई हम नाम भी ज़रूर बचेंगे, बधाई भी देवगे। और भाई कोशिश जरूर करें 6:50 से पहले आप ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर हमारे को SMS या WhatsApp के माध्यम से ज़रूर भेजें। और अब चर्चा कर लेते साथियों दुधारू पशुओं में गर्भपात की समस्या व समाधान के बारे में। मैंने और भाइयों देखो भाई, जो दुधारू पशु है दूध दही तो हमारा भाई बहुत ज़रूरी है। और भाई हरियाणा में जब बातचीत करते तो भाई दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। और पशुओं में गर्भपात की समस्या और रोकथाम की जब हम बात करें तो भाई देखो, इसमें पशु में गर्भपात एक ऐसी समस्या से जो ना केवल पशुओं बल्कि भाई बड़ी बड़ी पशुशालाओं को भी यो आर्थिक रूप से भाई काफ़ी क्षति पहुंचा सकती है। और गर्भपात है कि पहले तो हमने यो समझना पड़ेगा भाई, देखो गर्भकाल पूरा होने से पहले ही गर्भस्थ बच्चे का गर्भाशय से बाहर निकल जाना गर्भपात कहलाता है। और भाई गर्भपात की समस्या से पशुपालकों को हम किस तरह नुकसान होता है उसकी बात करें तो भाई देखो, गर्भपात के कारण पशुपालक को ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। गर्भपात से ना केवल भाई नवजात शिशु कमज़ोर या मरा हुआ पैदा होता है, बल्कि भाई जिस पशु का गर्भपात हुआ है उसे भाई बच्चेदानी का रोग भी इसमें लग सकता है और उसकी जो जनन क्षमता भी वह भी इसमें कम हो जाती है। तो गर्भपात के कारण की बात करें तो भाई के है, देखो एक तो गर्भपात के जो कारणों को दो भागों में हम विभाजित कर सके है। पहला तो एक तो है भाई संक्रामक कारण, और इसी तरह जो दूसरे कारण की जब हम बात करते हैं तो गैर संक्रामण कारण। और इसके अंदर भाई कौन से संक्रामण रोग है जिनके कारण पशुओं में गर्भपात होता है, इसकी भी जानकारी आपको जरूर दे देते हैं। एक तो देखो बहुत से जो जीवाणु से विषाणु जनित और फफूंद व प्रोटोजोआ जो जनित रोग होते हैं जिनमें भाई पशुओं में गर्भपात हो सकता है, जिस तरह भाई जीवाणु जनित रोग उसमें भाई ब्रुसेलोसिस, विब्रोसिस, क्लैमाइडियोसिस और लेप्टोस्पाइरोसिस और लिस्टेरियोसिस के कारण गर्भपात इसमें हो जाता है। और विषाणु जनित रोग की जब हम बात करें तो भाई तो इसमें इक्वाइन हर्पीस विषाणु और जो घोड़ियों में तथा इन्फेक्शन

फंक्शन बोयान और राइटोट्रैक्टाइकाइटिस वायरस से जो गाय है भैंस में गर्भपात हो सकता है, तो जीवाणु व विषाणु रोगों के अलावा भाई फफूंद रोग से भी की बात करें तो भाई जैसे एस पर जिलोसिस से भी गर्भपात इसमें हो सकता है। इसी तरह भाई प्रोटोजोआ रोग की बात करें तो ट्राइकोमोनियोसिस तथा टॉक्सोप्लाज्मोसिस के कारण भी भाई इसमें गर्भपात हो सकता है। तो ये जो रोग है ये गर्भपात के खतरनाक कारण होते हैं, क्योंकि संक्रमण एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकते हैं। और भाई अगर गर्भपात संक्रमण कारणों से होता है तो भाई शेष पशुओं में भी संक्रमण तथा गर्भपात का खतरा इसमें बना रहता है। तो भाई पशु में गर्भपात के गैर संक्रमण कारण की बात करें तो देखो गर्भपात के जो मुख्य गैर संक्रमण कारण ये है, इसमें एक तो देखो आहार में पोषक तत्वों की कमी का होना। सबसे पहले तो भाई हमने जो भाई हमारे पशुपालक बहन भाई है ध्यान जरूर रखना पड़ेगा भाई पशु के जो शरीर में सभी तत्वों का संतुलित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। पोषक तत्वों की जो कमी से है वो संतुलित आहार न देने की भाई वजह से भी होती है। कैल्शियम की कमी के कारण पशु पीछा दिखाना शुरू कर देता है और गर्भपात हो सकता है। तो विटामिन ए और आयोडीन की कमी से भी भाई गर्भपात इसमें हो सकता है। इसी तरह साथियों हार्मोन्स स्तर में गड़बड़ की बात करें तो भाई देखो गर्भ के दौरान संतुलित हार्मोन स्तर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन भाई इनकी कमी या फिर अधिकता से गर्भपात हो सकता है। जैसा कि फास्फोरस की कमी के कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी कम हो जाता, तो इस प्रकार प्रोजेस्टेरोन की कमी एस्ट्रोजन तथा ऑक्सीटोसिन की जो अधिकता है गर्भपात का जो कारण है वो भी हो सकती है। इसी तरह भाई विषैले पदार्थ की भी हम बात जरूर कर लेते हैं और इसमें भाई कुछ हानिकारक पदार्थों के अनाचक से जो अचानक जो सेवन से भी गर्भपात इसमें हो जाता है, जिस तरह भाई नाइट्रेट जहरवाद कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कीटनाशकों के छिड़काव आदि से भी गर्भपात इसमें हो जाता है। और इसी तरह साथियों प्राकृतिक इसमें ये के तो बता दिया इसमें भाई विषैले पदार्थ है कुछ हानिकारक पदार्थों के अचानक सेवन से जो गर्भपात हो जाता है हमने जिस तरह बताया। इसी तरह भाई प्रतिकूल वातावरण की जब हम बात करते हो भाई जिस तरह अधिक गर्मी सर्दी तभी गर्भपात इसमें हो सकता है। और अनुवांशिक कारण की बात करें तो भाई हर 3 साल के बाद अपने फार्म या फिर जो गांव में जो सांड लेने की सही समस्या का समाधान इसमें हो सके है। तो भौतिक कारण की बात करें तो देखो इन कारणों के अंतर्गत पशु को चोट पहुंचने से संबंधित कारण भी आते हैं, जिस तरह भाई पशु का जो ऊंचाई से गिर जाना या खाई को लांघना, कुत्तों द्वारा ज़्यादा दूर तक पीछा करना, काफ़ी देर तक आपस में लड़ाई करना, दाहिने कोख में दूसरे जानवर द्वारा चोट पहुँचाना, परिवहन के दौरान भाई अधिक हिलना डुलना और सकरे रास्ते से गुजरना, अनियमित गर्भ परीक्षण तथा पशु का बांझपन के लिए उपचार, अनियमित खान पान की बात कर लेते हैं या फिर गर्भकाल की जो अंतिम अवस्था में टीका यानी कि वैक्सीन है उसके लगाने के कारण भी इसमें भौतिक कारणों में ये शामिल होता है। तो भाई जो किसान बहन भाई है या पशुपालक है थोड़ी सी सावधानी रखते हैं तो भाई इस तरह भाई निश्चित तौर पर गर्भपात की जो समस्या है उसकी रोकथाम इसमें हो सकती है। इसमें हमने भाई जो ध्यान रखना है इसमें एक तो देखो गर्भित जो पशु को जड़ तक संभव हो भाई उनके जो गर्भावस्था के अंतिम महीनों में दूसरे पशुओं से हमने अलग रखना चाहिए और इसी तरह इन पशुओं के रहने की जो जगह भाई साफ सुथरी भी होनी चाहिए, हवादार और रोशनी वाली जो होनी चाहिए। इसी तरह भाई जो गर्भित पशु को मुलायम हरा तथा ठीक प्रकार से कट्टा चारा व साफ पानी हमने देना चाहिए। चारे के केला उचित मात्रा में भाई खल दे दे व दाना है खनिज मिश्रण है वो भी हमने देने चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई गर्भित जो पशु को ज़्यादा भगाया या दौड़ाया नहीं जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए तथा प्रतिदिन यो देखते रहना चाहिए कि भाई वो चारा ठीक प्रकार से खा रहा है या नहीं। तो इसी तरह पशु कहीं सुस्त तो नहीं है या फिर कहीं उसको भाई बुखार तो नहीं है, इसका भी हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह अगर जो भाई कोई पशु
गर्भकाल को पूरा होने से पहले ही ब्याने के लक्षण भाई दिखाता है तो भाई उसको तुरंत पशु चिकित्सक को हमने दिखाना चाहिए, और जिसका गर्भपात हुआ हो उस पशु को भाई तुरंत स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। गर्भपात हुए बच्चे तथा जो जेर को भाई जानवर से अलग कर बाड़े को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए, और भाई मरे हुए बच्चे का तथा जेर का पशु चिकित्सक से निरीक्षण हमने करवाना चाहिए। अगर जो भाई पशु 8 से 12 घंटे तक जेर नहीं गिराता तो भाई उसको पशु चिकित्सक को हमने दिखाना चाहिए। इसी तरह भाई जो गर्भपात हुए पशु के जो खून का परीक्षण करवाना बहुत जरूरी है, इसके लिए भाई जानवर का जो रक्त है गर्भपात के तुरंत बाद तथा 3 हफ्ते बाद निकाल कर परीक्षण इसमें करवाना चाहिए। तो भाई एक जो गर्भपात की जो समस्या भाई अपने देश के पशुओं में तो भाई है ही, आमतौर पर भाई संकर पशु इस समस्या के अधिक शिकार होते हैं। तो संक्रामक रोग से जैसे ब्रुसेलोसिस, विब्रियोसिस के अलावा आहार में कुछ खास तत्वों की कमी है, शरीर में हार्मोन स्तर में गड़बड़ी से है, या कदे कदे भाई पशु के रखरखाव व देखभाल में कमी भी पशुओं में भाई गर्भपात का कारण इसमें बन जाती है। तो कुछ सावधानी को ध्यान रखें तो भाई गर्भपात की जो समस्या की रोकथाम इसमें हम कर सकते हैं, और भाई पशुधन से हम लाभ जरूर ले सकते हैं। और साथियों देखिए, ये आजकल तो भाई जो हमारे पशुपालक बहन भाई है भाई इसका इनका कार्ड भी बना देते हैं, सारी चीज़ उसके अंदर रखते भी है, सफाई व्यवस्था की भी है। तो कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए भाई, ये छोटी छोटी बातें अगर जो हम अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर भाई जो पशु पालना भाई घाटे का सौदा नहीं है, लाभ का है। तो कोशिश ज़रूर करें कि भाई हर प्रकार की सावधानी आप ज़रूर रखें, और भाई जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है जो भाई वेटरनरी सर्जन है उनसे हमने बातचीत करनी जरूर चाहिए। हर जिले कस्बे में है, मुफ्त में भाई सारी सलाह भाई सरकार काफ़ी जोर लगाती है भाई, सारी चीज़ आपको मुहैया कराती है। तो कोशिश करें भाई उनसे सलाह लेकर ही आप अपने पशुओं की देखभाल ज़रूर करें। ये तो बात करी थी भाई हमने जो दुधारू पशु में गर्भपात की समस्या व समाधान के बारे में बात करी थी। इब भाई हम जो बात कर लेते हैं कल के कृषि कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। भाई देखो कल तो है शनिवार और कार्यक्रम रहेगा किसानवाणी, उसमें बातचीत हम जो विषय लेकर आए भाई आज की नसीहत में धान की सीधी बिजाई में खरपतवार नियंत्रण व अन्य देखभाल की बात करेंगे। इसी तरह भाई जानकारी भी जरूर देंगे अतिरिक्त आय के रूप में बागवानी का किसानों के लिए महत्व, दोनों महत्वपूर्ण जानकारी है भाई, जरूर कार्यक्रम सुनिए। और अब भाई मौसम की जानकारी जरूर दे देते हैं भाई, अधिकतम 39 और न्यूनतम की बात करें तो भाई 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की यदि हम बात करें तो अधिकतम 39 और जो न्यूनतम है भाई 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई अब समय ज़रूर हो गया रागणी का, और रागणी के बाद भाई हम जो बातचीत नई फसल नई उमंग में करेंगे, तिल की बिजाई की और अन्य जानकारी भी, लेकिन भाई ये रागणी सुनते हैं कार्यक्रम अन्नदाता में।

के मैं कसर रही तन सारी रात बचाई। कृष्ण जी के मंदिर में मैं पूजा करके आई। रात में भजन करण की बता तेरे किसने शिक्षा।

तोर नाट जा सारा तेरा मन साका पाप होया तू भीतर लेता काला मेरा काला रही बता तन पोड रूप दिया था।

करके दो बालम पिया क्यों कर लुके रंग नैन छह सत्रह का करया सामना रही जीत इसके दंग नैन इश्क करण का मेरे पिया मैं नहीं जानती ढंग नैन इज्जत यारे की मार हो के

तो बहनों और भाइयों, ये आपने रागनी सुनी थी भाई ज्ञानी राम के किस्से से, हमने ज़रूर ली थी। और देखिए, जो जितने भी किस्से होते हैं, जो बातचीत हम करते हैं रागनियों के माध्यम से, हमारे शब्द हमारी भावनाएं ज़रूर होती है। और पहले तो भाई खुले आसमान के अंदर भाई ये जो सांग के कार्यक्रम होते थे, और भाई प्रहलाद भगत है या फिर अन्य जो किस्से है वे ज्ञानी राम के है, तो भाई ये ज़रूर सुनते थे और भाई शिक्षा ज़रूर दे देते थे भाई, और एक भविष्य को ज़रूर बताते थे कि भाई अगर जो ऐसा करते तो यह हाल होगा। इस प्रकार से जो जीवन जीने का जो मंत्र है वो हमने भाई रागनियों के माध्यम से, भाई सांग के माध्यम से ज़रूर मिलता था, और आज भी हम देखा है तब लोग इन चीज़ों को बहुत पसंद ज़रूर करते हैं। और भाई पसंद कार्यक्रम आप हमारा जो अन्नदाता है, किसानवाणी है या अन्य जितने भी कार्यक्रम, आप सभी ज़रूर पसंद करते हैं। और आकाशवाणी से यूं ही बने रहने के लिए भाई हमारा जो YouTube चैनल है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और जो महत्वपूर्ण जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं हम उनको अपलोड करते हैं ताकि भाई कोई भी कार्यक्रम मिस ना हो। इसी तरह साथियों, रेडियो से बने रहने के लिए भाई आजकल तो मोबाइल है, जिस तरह हर दूसरे हाथ में मोबाइल है, तो भाई प्ले स्टोर से आप बहुत सारे ऐप हैं रेडियो के, उनको डाउनलोड कीजिए, न्यूज़ ऑन AIR जिस तरह, तो भाई उस पर जैसे आप कुरुक्षेत्र को टच करते हैं, लिखते हैं, तो भाई जो भी लाइव कार्यक्रम है आप हमारे से सीधे जुड़ जाते हैं। तो भाई ये तो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, और जानकारी आपको ज़रूर दे देते भाई नई फसल नई उमंग की भी तिल की भी जाएगी। और जब भाई इस विषय की हम बात करते हैं, जो भाई तिल है वो भाई एक भारत का प्रमुख तिल उत्पादन देश है।

और भाई पूरे विश्व में सबसे अधिक तिल की खेती भी भारत में ही होती है, और पैदावार भी भाई अन्य देशों की अपेक्षा अधिक से, और अन्य देशों की तुलना में भाई भारत में जो तिल की जो खेती है वो भाई 19.5 लाख हेक्टेयर में होती है, और कुल पैदावार 8.5 लाख टन है। और हरियाणा की जब हम बात करें तो भाई हरियाणा प्रदेश में तिल की जो खेती 3,000 हेक्टेयर में होती है, और यद्यपि भाई राज्य में जो तिल की पैदावार 1,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से है, जो देश की औसत पैदावार 436 किलोमीटर ग्राम प्रति हेक्टेयर से काफ़ी अधिक से है, तो भाई फसल की पैदावार क्षमता 1,680 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से काफ़ी कम है। तो पैदावार क्षमता और औसत पैदावार के इस अंतर को इस फसल की उन्नत ढंग से अगर जो खेती करके कम कर सकते हैं, अच्छी पैदावार के लिए भाई किसान बहन भाइयों को भाई कुछ थोड़ी सी सावधानी रखकर, तो भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ ज़रूर ले सकते हैं। और इसके अंदर जो अच्छी किस्म के जो बीज का चुनाव किसान को अधिक पैदावार लेने के लिए भाई उन्नत किस्म की अच्छी गुणवत्ता के बीज का चुनाव जरूर करना चाहिए। किसानों को तिल की उन्नत किस्म का अच्छा बीज उपलब्ध नहीं हो पाता तो भाई नज़दीकी जाकर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और भाई देखो हरियाणा की जब हम बात करते हो जो किस्म की बातें का वर्णन करता है ST1 है भाई, या किस्म तिल की प्रमुख बीमारियों पत्ती मरोड़ वोर फाइलोडी की प्रतिरोधी है, और यह भाई 75 से 80 दिन में पक्कर हमारी तैयार हो जाती है फसल। और इसकी जो ऊंचाई है वो मध्यम, पत्ते गहरे हरे और बीज सफ़ेद व सुडोल होते हैं। और इसमें भाई तेल की मात्रा की बात करें तो भाई 49% इसमें होती है। इसकी औसत उपज 2.9 क्विंटल प्रति एकड़ हमने प्राप्त होती है। ST2 की बात करें तो यह भाई केसम पत्ते का मोजक वायरस व फाइलोडी रोग की अवरोधी है, और भाई 87 दिनों में यह हमने पक जाती है। इसका दाना सफ़ेद होता है। जिस तेल की मात्रा की बात करें तो 48.2% इसमें होती है, और इसकी औसत पैदावार 4 क्विंटल प्रति एकड़ हमने मिलती है। और बिजाई के टाइम की भी बात जरूर कर लेते हैं भाई, तिल की जो बिजाई का जो सही टाइम की बात करते तो भाई इसमें भाई जुलाई महीने का जो पहला हफ्ता है वो रहता है, और इससे पहले बिजाई की जो गई फसल में बीमारी व कीड़ों का प्रकोप अधिक रहता है, और वर्षा आधारित क्षेत्रों में भाई मानसून की जो शुरुआत के साथ ही इसमें बिजाई कर देनी चाहिए। तो भाई अगर जो आप इसका अपनाते हो तो भाई इसमें लाभ जरूर मिलता है। भाई टाइम से ही अन्न हो रहा है तो इसकी आप पूरी तैयारियाँ कर सकते हैं। और बीज की मात्रा व बिजाई की विधि की बात करें तो भाई तिल की 1 एकड़ की बिजाई के लिए भाई उत्तम गुणवत्ता का 2 किलोग्राम बीज काफ़ी रहता है। अच्छी पैदावार के लिए भाई बिजाई पोरा या फिर ड्रिल की सहायता से 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में करें, और बिजाई खुडों में 30 सेंटीमीटर और पौधों में 15 सेंटीमीटर के फासले पर भाई करें, और उचित दूरी पर बीज डालने के लिए भाई बीज को मिट्टी राख या खाद में मिलाकर मात्रा बढ़ाए और इसमें बिजाई जरूर करें तो भाई लाभ जरूर मिलता है। और खाद की मात्रा डालने की विधि की बात करते तो भाई तिल की फसल को अधिक खादों की आवश्यकता नहीं होती। संभव हो तो भाई इसमें गोबर की गली सड़ी खाद बिजाई से पहले देना बहुत बढ़िया रहेगा। कम उपजाऊ जमीन में भाई 15 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 30 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ बिजाई से पहले डाल देना चाहिए। और भाई बात फसल की सिंचाई की करें तो तिल की खेती आमतौर पर भाई कम पानी वाले क्षेत्रों में की जाती है, तो कम वर्षा की स्थिति में जरूरत के अनुसार 1 या 2 सिंचाई फूल आने के समय पर डोडिया बनने के बाद अच्छी पैदावार के लिए इसमें देना फायदे इसमें रहता है। तो भाई ये अगर जो बीमारियों की बात करें तो फाइलोडी झुलझा रोग जड़ गलन तथा गलन तिल फसल की प्रमुख बीमारी है, तो फाइलोडी की रोकथाम के लिए भाई फसल की अगेती बिजाई न करें। फसल की बिजाई 15 जुलाई के लगभग करें। रोगी पौधों को शुरू से ही निकाल कर नष्ट कर दे, और कीड़ों की रोकथाम रोगों से करें। और झुलसा रोग की रोकथाम के लिए भाई फसल पर मैनकोजेब 800 ग्राम प्रति एकड़ का 250 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करें। जड़ व तना गलन की रोकथाम के लिए भाई बीज का उपचार व थायरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसमें करें। तो कुल मिलाकर बात करें तो भाई तिल का जो उत्पादन है भाई लाभ का सौदा है, और लाभ के सौदे की बात भाई जरूर आ गई है भाई ध्यान में। आज का कृषि प्रश्न भी हमने जरूर पूछा था।

भाई राज्य में कौन सा जिला खुम्बे के उत्पादन में देश में अग्रणी है? और इसका जो सही जवाब है साथियों, सोनीपत है। सोनीपत में भाई सबसे पहले खुम्बी का उत्पादन शुरू हुआ था, और भाई एक व्यक्ति है मास्टर जगदेव सिंह, तो भाई उन्होंने शुरुआत इसकी करी थी। और धीरे धीरे भाई सभी प्रगतिशील किसान बहन भाई करने लगे, और भाई खुम्बी का तो एक सेंटर भी है मुरथल में, वहाँ से भी आप प्रशिक्षण ले सकते हो। और डॉक्टर अजय सिंह यादव है जो उन बड़े अधिकारी है, तो भाई सारा प्रशिक्षण फ्री होता है, रहना खाना और सारी जानकारी आपको ज़रूर देते उधर। तो भाई ज़रूर प्रशिक्षण लीजिए, और अब जो जिन्होंने सही जवाब दिए थे उनके भी नाम हम ज़रूर ले देते हैं। भाई हमारे पास पहला जवाब भाई सही आया था, भाई हरदीप कुरुक्षेत्र से इन्होंने सही जवाब दिया। इसी तरह भाई योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से, रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल सिरसा से। और भाई इसी तरह भाई हमारे पास जो सही जवाब यमुनानगर से भी, हमारे रणधीर सिंह वांगड़ में, जो देवी और परिवार के सभी सदस्यों के नाम। और इसी तरह भाई एक प्रोफेसर जयसिंह खनगवाल रोहतक से भी सही जवाब आया है, और कुरुक्षेत्र से भी हमारे को सही जवाब सेक्टर 30 से आया, धर्मपाल सिंह, मूर्ति देवी और परिवार के सभी सदस्य। तो भाई ये सही जवाब देने वालों को आपको बहुत बहुत बधाई। और बात जरूर कर लेते भाई महत्वपूर्ण जानकारी की, भाई किसान कॉल सेंटर है 1551, घर बैठे आप सारी जानकारी इस पर ले सकते हैं। इसी तरह जानकारी भाई PIB ऐप के माध्यम से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह भाई मोबाइल आज डिजिटलाइजेशन हो रहा, तो मोबाइल ऐप पर भाई PIB ऐप के माध्यम से आप केंद्र सरकार द्वारा जो प्रगतिशील किसान बहन भाइयों के लिए जितनी भी सुविधा है, बातचीत है, भाई सारी की सारी अपडेट उस पर जरूर रहती है। महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, घर बैठे भी आप किसान कॉल सेंटर से 1551 पर सारी जानकारियाँ इसमें ले सकते हैं। तो साथियों ये बातचीत हमने जरूर करी, और भाई गर्मी काफ़ी हो गई है, आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने पशुधन का भी जरूर ध्यान रखिए। और भाई जो जड़ा आप पशु ने बांधो बेड़े है जो भाई, उस पर भाई आप जरूर छप्पर वगैरह सही डालिए उस पर, और भाई बोरी बारी आप जरूर लगा सकते हैं जड़ता वाती खिड़कियों में, और भाई पानी भी इसमें डाल सकते हैं। और कई बार भाई कती लू चलती है, तो भाई जो हमारे पशुधन है भाई काफ़ी गर्मी लगा है, वो भाई समय समय पर पानी भी जरूर पिलाए, क्योंकि भाई गर्मी में जब हमारा ही भाई जो गला सूख जाता तो पशुओं का, तो भाई वो तो बेजुबान होते हैं, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, रहन सहन की व्यवस्था भाई जरूर आप ध्यान रखें। और पशुओं को भाई जब आप घुमाने ले जाते हो तो घर से ही पानी पिलाकर अपने ले जाना चाहिए, और पशुओं की देखभाल हम अच्छी प्रकार से करते हैं तो निश्चित तौर पर साथियों जो घी दूध भाई सही बना रहता है, क्योंकि बाजारों में हम देखते तो भाई बाजारों में हमें मिलावटी सौदा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कोशिश यदि आप बेहतरीन जीवन की करते हैं भाई, थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं, तो निश्चित तौर पर साथियों उसका लाभ जरूर मिलता है, आपको भी मिलता है, आपके बच्चों को भी, और भाई मजबूती से आगे देश को जरूर आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों आज जो कार्यक्रम अंदाता है, आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही, और कल कार्यक्रम किसानवाणी रहेगा, और आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। तो अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।

क्षेत्र केंद्र है। अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे अन्नदाता, और अब कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम संसार। और इस समय ठीक 7 बज गए हैं, कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और कार्यक्रम साथियों ग्राम संसार, जैसे कि नाम से ही हम नबेरा चल जाता है भाई, गांव गुआंठ हमारी लोक संस्कृति और देश को आगे बढ़ाने की वो तमाम सभी बातें हम कार्यक्रम ग्राम संसार में करते हैं, क्योंकि भाई जो गांवों से ही देश का विकास आगे बढ़ता है और गांव हमें दिशा दशा जरूर देते हैं रहन सहन की, हमें आगे बढ़ने की। और भाई निश्चित तौर पर बात करें तो साथियों ज़रूर हम शहरों की तरफ हमने पलायन ज़रूर कर लिया है, लेकिन आज भी हमारी जो लोक संस्कृति है हमारे को ज़रूर बुलाती है और हम आते जाते भी बच्चों को भी ज़रूर ले जाते हैं। विशेष तौर पर भाई छुट्टियों में भाग दौड़ की ज़िंदगी ज़रूर है भाई, अच्छी शिक्षा और भाई रुपये धेले के चक्कर में हम ज़रूर शहरों के अंदर पलायन ज़रूर कर गए हैं, रहने लगे हैं, लाइफस्टाइल हमने बेहतर बना लिया है, लेकिन साथियों गांव की तो बात ही निराली है। और गांव के जब बात करते हैं तो साथी वो तमाम सभी बातें पुरानी याद हमें ज़रूर आ जाती है, जिस प्रकार से हम पले बड़े हुए, हमारी शिक्षा, हमारे कुनबे, हमारे परिवार ने जिस प्रकार से हमारा ध्यान रखा। और पहले तो भाई जब बड़े परिवार होते थे तो भाई बच्चों की चिंता नहीं रहती थी और ना ये रहता था भाई उसने रोटी खाई है या नहीं, क्योंकि भाई चाचा ताऊ इतने हुआ करते भाई, जिधर भी वो दिल करता तो उस घर में रोटी खा लिया करते, कोई भी हर एक बच्चे का ज़रूर ध्यान रखते थे और कोई भी ये नहीं था भाई ये सगा है या फिर दूसरे का है, बिल्कुल सभी सम्मान रूप से हम सभी को आगे बढ़ाते थे। तो भाई गाँव की बात निराली है और कार्यक्रम में हम हमेशा हर विषय बेहतरीन विषयों को लेकर जरूर आते हैं, जिस तरह समाज हमेशा आगे बढ़े। और आज का जो विषय भी भाई इस गाने में ज़रूर छुपा है और ज़रूर बताएंगे कि भाई विषय महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आज यदि हम देखते हैं तो भाई ज़रूर समाज तकरीबन जाता दिख रहा है, लेकिन साथियों अगर जो हमारी कोशिशें बेहतरीन हैं हम उस चीज़ को समझते तो समाज को भी हम दिशा और दशा ज़रूर दे सकते हैं। भाई सुनते हैं ये लोकगीत, लेकिन साथियों पहले कुछ संदेश और उसके बाद ये सुनते हैं लोकगीत कार्यक्रम ग्राम संसार में।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
5: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
4: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
5: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
4: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मोहन नगर कुरुक्षेत्र
5: 8708903436।
6: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
7: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
6: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
7: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।

0: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
1: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
0: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: बहनों और भाइयों, कार्यक्रम है ग्राम संसार और ग्राम संसार में हम बात जरूर कर रहे हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय साथियों, आप इसे लोकगीत से जरूर समझ गए हैं भाई, नशा मुक्ति की बात जरूर कर रहे हैं और आज विश्व नशा मुक्ति दिवस है, क्योंकि विश्व नशा मुक्ति दिवस यानी नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो प्रतिवर्ष हम भाई 26 जून को मनाते हैं। और इसका उद्देश्य भाई दुनिया भर में नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। और अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के जब हम बात करते हैं तो पहले तो हम इतिहास की भी ज़रूर बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भाई 7 दिसंबर 1987 के प्रस्ताव के माध्यम से इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। और उद्देश्य, जिस तरह भाई हम सभी जानते हैं कि नशीली दवाओं की जो लत है, इसके अवैध व्यापार और समाज पर पड़ने वाले इसके जो विनाशकारी प्रभाव के खिलाफ वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। और भाई जब सरकार द्वारा पहलों की बात करते हैं, भाई सरकार पूरा जरूर हंगा लगाती है और भाई बड़े बड़े बोर्ड भी दिखते हैं, कार्यक्रम भी करवाती है और भाई पुलिस भी अपना कार्य अच्छे प्रकार से निभाती है। और भारत सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने और नशा मुक्त भारत के निर्माण के दृढ़ता से काम कर रही है। इसके तहत मादक पदार्थों के दुरुपयोग है, अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस भाई संयुक्त राष्ट्र के अवसर पर देश भर में विभिन्न जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। युवा अभियान की जब हम बात करते हैं तो भाई खेल मंत्रालय द्वारा भाई युवाओं को जोड़ने और जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम जैसे राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत जैसी पहल शुरू की जाती है। और भाई जब अंतर्राष्ट्रीय नशा जो मुक्ति दिवस की जब हम बात करते हैं तो विश्व नशा मुक्ति दिवस की तो साथियों हमने इसमें जरूर सहयोग करना चाहिए। और भाई जहाँ पर भी आपके आस पड़ोस में नशे की जो गतिविधि हो रही है तो साथियों उसकी जानकारी हमने जरूर देनी चाहिए, पुलिस विभाग को देनी चाहिए या फिर बड़े अधिकारियों को। और भाई आप उपायुक्त को भी इसकी सूचना दे सकते हैं ताकि भाई इन पर लगाम लगे सके, क्योंकि साथियों जब हम बात हरियाणा की करते हैं, आसपास की करते हैं, तो भाई जिस प्रकार से यहाँ के बच्चों ने भाई विश्व के अंदर भाई अपना लोहा मनवाया है और भाई मेडलों की जो बौछार करी है, तो साथियों इस चीज़ को बचाना भी हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि साथियों यहाँ के जो बच्चे हैं भाई दूध दही का खाना है वो मेरा हरियाणा, और यहाँ के बच्चों ने जो प्रूफ किया है भाई खेलों में देश में भाई नंबर वन है। और मेडलों की जब हम बात करते हैं तो मेडलों का दूसरा नाम भाई हरियाणा है। तो इस हरियाणा को बचाने के लिए आप सभी से निवेदन है साथियों, जो भी नशे की गतिविधि होती है तो प्लीज़ आप अपना सहयोग ज़रूर करें और भाई नशा खोरों को ज़रूर पकड़वाए पुलिस से और तस्करों को भी। और साथियों जो जानकारी गुप्त ज़रूर रखी जाती है, और बातचीत हम कर रहे थे विश्व नशा मुक्ति दिवस की, तो आपका सहयोग ज़रूरी है। और

बच्चों को भी हमें ज़रूर जागरूक करना चाहिए और इसके जो दुष्प्रभाव जो परिणामों को भी बताना चाहिए। और भाई जिस प्रकार से ये गाना हमने बजाया था, एक विरह का ज़रूर था फिल्म नंबरदार से। और कहते साथियों, जीवन के गणित के अंदर भाई, वैसे तो गणित में दो मत एक चला जाता तो एक बचता है, लेकिन हम जीवन के गणित की बात करते हैं तो भाई जब दो में से एक चला जाता है तो शून्य बचता है, यानी कि पति पत्नी में से जब एक चला जाता है तो शून्य बचता है, क्योंकि उसकी जीवन अकेला हो जाता है, किस प्रकार से संघर्ष है। तो हमें वो तमाम सभी बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए, हमारे माता पिता का संघर्ष है, हमारे को किस प्रकार से कितनी मुसीबतों में हमारे को पाला है, बड़ा किया है, और हमारा जो जीवन का लक्ष्य है साथियों हमें ज़रूर समझना चाहिए। और पैसे की वैल्यू का भी हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि माँ बाप कितनी मेहनत से हमारे लिए भाई हर चीज़ का जुगाड़ करते हैं, और हमें उनके जो सपनों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि साथियों उन्होंने अपने सपने हमारे में देखे हैं, और अपने सपने जब पूरे हम करते तो भाई बेटा ही करता है, क्योंकि माँ बाप जो थे वो सोचते भाई कम से कम हम जिस बच्चे की परवरिश कर रही है वे हमारे सपनों को ज़रूर पूरा करेगा। तो कोशिश ज़रूर करें साथियों, अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा काम करे और परिवार की एकता को हमेशा बनाए रखे, क्योंकि नेतृत्व जो होता है साथियों वे बेहतर होता है, और हमें उनको भी ज़रूर याद करना चाहिए। परिवारों के अंदर बड़े बुजुर्गों के माता पिता है या दादा नानी, दादा दादी है, नाना नानी है, किस प्रकार से देश के सम्मान में उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया। और हरियाणा की बात करते थे साथियों, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, और इस प्रकार से हमेशा परंपराओं को आगे ज़रूर बढ़ाया है। तो कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए भाई, जो नशा अगर जो फैल रहा है तो उसको रोकने का परम कर्तव्य भी हमारा ही है। तो अभी ये लोकगीत सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार में।

बहन और भाइयों, कार्यक्रम है ग्राम संसार और मैं आपका साथी विनोद मरवाल और आकाशवाणी कुरुक्षेत्रा केंद्र से आपने हमारे को ट्यून किया है FM बैंड 101.4 आकाशवाणी कुरुक्षेत्रा के FM बैंड से। और साथियों, विषय हमारा आज है विश्व नशा मुक्ति दिवस, क्योंकि 26 तारीख को साथियों हम ये मनाते हैं। और हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों और परिवार को नशे से दूर हम किस प्रकार से करें। तो कुछ एक तो भाई खुला संवाद हमने ज़रूर करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मजबूत पारिवारिक रिश्ते और सही मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नशा मुक्ति की शुरुआत भाई हमेशा घर के सुरक्षित माहौल से होती है। और आपने पहले भी देखा साथियों कि जब हम छोटे थे तो भाई परिवार के अंदर पूरे दिन की दिनचर्या को ज़रूर हम साझा करते थे, बताते थे और बैठते भी थे भाई इकट्ठे, भाई चूल्हे के आगे भाई इकट्ठे रोटी भी खाते थे, वो ध्यान भी है। लेकिन आज हम परिवार को देखते भाई छोटे परिवार ज़रूर रह गए हैं और भाई चाचा ताऊ भी डांट दिया करते, कह दिया करते, बुरा नहीं मना करते। लेकिन आज यदि पिता भी डांटता है तो भाई बच्चा एकदम विद्रोह करना शुरू कर देता कई बार हम देखते हैं। लेकिन साथियों, हमें बच्चों को एक दोस्त की तरह जरूर रखना चाहिए। नशा मुक्ति की शुरुआत हमेशा घर से ही सुरक्षित माहौल से होती है और परिवार को इस संकट से बचाने और दूर रखने के लिए भाई अगर जो बच्चों के साथ की बात करें तो एक तो बच्चों के साथ मजबूत रिश्ता बनाए, दोस्त बनकर बात करें, बच्चों पर चिल्लाने या शक करने के बजाय उनसे खुलकर बात करें ताकि वे अपनी परेशानियां आपस में न छुपाए। इसी तरह साथियों, रोजाना समय बिताए बच्चों के साथ, वन ऑन वन यानी अकेले में समय बिताए, उनके स्कूल, दोस्त और पसंद नापसंद के बारे में नियमित रूप से आप जाने ताकि आपको पता चल जाए भाई बच्चा किस दिशा की तरफ चल रहा है। आत्मविश्वास उनका बढ़ाए, बच्चों की छोटी छोटी सफलताओं की तारीफ करें ताकि वे पीयर प्रेशर यानी कि दोस्तों के दबाव में न आए। खुद रोल मॉडल भी आप जरूर बने भाई, घर में नशा ना रख कर रखे। यदि माता पिता या बड़े सदस्य घर में शराब, सिगरेट या फिर तंबाकू का सेवन करते तो भाई बच्चे भी उसे जल्दी अपनाते हैं।

और तनाव से निमटने के सही तरीके भी अपनाए, क्योंकि बच्चों को सिखाए कि तनाव या दुख से निमटने के लिए नशा नहीं बल्कि योग, खेल या फिर कला जैसे स्वस्थ रास्ते बेहतर है। संगीत भी बेहतर रास्ता है। और लक्षणों को पहचाने और सतर्क रखें, व्यवहार पर उनके नज़र रखें। अगर बच्चा अचानक उदास रहने लगे, पढ़ाई में भाई पिछड़ने लगे, नए रहस्यमय दोस्त बनाए या उसके सोने जागने का पैटर्न बदले, यानी कि भाई देर तो सो मोबाइल में लगा रहा है, तो भाई सतर्क रखे। और भाई मोबाइल पर तो आप उनकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं, भाई वो क्या क्या सर्च करते हैं, क्या क्या देखते हैं, तो निगरानी आप ज़रूर रखें। और यह ज़रूर जाने कि आपका बच्चा स्कूल या कॉलेज के बाद अपना समय कहाँ पर किसके साथ बिता रहा है। और यदि कोई पहले से नशे की चपेट में है तो भाई उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। बिना निर्णय के सुने उन्हें डांटते या दोषी ठहराने के बजाय प्यार से समझाए कि नशा उनकी सेहत और परिवार को कैसे बर्बाद करता है। और साथियों उन्हें आप अपनी तकलीफ भी बताइए, हमने कितनी मेहनत लगन से भाई आपको यहाँ पर पहुँचाया है। पैसे की वैल्यू का भी आप ज़रूर उनसे बातचीत करें ताकि हम नशे से दूर रह सकें। तो साथियों ये अंतिम लोकगीत कार्यक्रम ग्राम संसार में।

तो साथियों, आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही, और कोशिश जरूर करके अपने परिवार के सदस्यों को अच्छे प्रकार से आप ध्यान भी रखें, उनका देखभाल रखेंगे, उनसे दोस्त की तरह बातचीत करेंगे और आज के समय के परिवेश के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से भाई हमने संघर्ष करके आज यहाँ पर आज गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो छोटी छोटी बातें साथियों जो उनको मोटिवेट भी करें और आपके संघर्षों से वे सीखकर समाज में हमेशा आगे बढ़े। और भाई उनकी जो आदतें आप उनको खेल में या संगीत में कुछ हैबिट में जरूर डालें ताकि वे नशे से दूर रहे। तो आज के कार्यक्रम के अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम संसार किसानवाणी कार्यक्रम एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 7:30 बजे हैं, आज सुनते हैं जय जवान कार्यक्रम।

जय जवान कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। सैनिक भाइयों, किसी ने कहा है कि जिस मिट्टी ने वीरों को जन्म दिया, जिस धरती ने सपनों को साकार किया, उस देश की पहचान सिर्फ नक्शों से नहीं बल्कि उस देश के हौसलों से भरे हुए जवानों से होती है। आज हम अपने कार्यक्रम में अपने सैनिक भाइयों को वो गीत सुनवाने वाले हैं जो गीत आपके कानों के रास्ते आपके दिल में रस घोल देंगे, क्योंकि दोस्तों ये वो देश है जहाँ खेतों में मेहनत गीत बन जाती है, जहाँ त्योहारों में दिल मिलते हैं और जहाँ जवानों की आंखों में भविष्य चमकता है। यहाँ सुबह उम्मीदों से सजती है, यहाँ शाम भी गीत सुनाती है। ये धरती वीरों की धरती है जो हर दिल में भारत को बसाती है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में

0: HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
6: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
5: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।

सैनी भाइयों, सरहदें उन नक्शों पर खींची लकीरें नहीं होती। सरहदों की रखवाली में जाने ना जाने कितनी आंखें जागती हैं, कितने सपने पहरा देते हैं और कितनी सांसें वतन के नाम होती हैं। देश की ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं, उसके उन वीरों में होती है जो हर मौसम, हर चुनौती और हर परिस्थिति में देश की रक्षा करने का संकल्प निभाते हैं।

सैनिक भाइयों, ज़िंदगी की राहें अकेले तय हो जाएं ऐसा कम ही होता है ना। कुछ मंजिलें कदमों से नहीं, साथ चलने वालों से आसान बनती हैं। किसी ने कहा है कि एक दिया अकेला हो तो हवा से डर जाता है। कई दिए साथ चलें जलें तो अंधेरा भी रास्ता बदल जाता है। जीवन का सबसे सुंदर एहसास यही है कि जब हाथों में हाथ हों तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं और सपने बड़े हो जाते हैं।

कितना प्यारा संदेश है ना इस गाने में। साथ चलने की ताकत, मिलकर सपने देखने की ताकत और उन्हें सच करने का हौसला। किसी ने कहा है कि जो अकेला चला वो थक भी गया, जो साथ लेकर चला वो बढ़ भी गया। हाथों में हाथ हों तो राहें खिल उठती हैं, मिलकर चलो तो हर सपना सच हो जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी खुश रहें अपने जीवन में, अपने दोस्त प्रदीप को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: गुलदस्ता कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से वडाली बंधु पूर्णचंद वडाली और प्यारे लाल वडाली की आवाज में गाई कुछ रचनाएं।
1: मंगल भवन मंगल
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम गुलदस्ता FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं आप सभी सुनने वालों का पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। श्रोता दोस्तों, कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। कुछ सुर सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, दिल में उतर जाते हैं। और श्रोताओं, जब बात हो मिठास की, नजाकत की, भाव की और सुरों की, तो हमें इस संगीत की अद्भुत दुनिया में एक नाम हमारे सामने आता है, श्रेया घोषाल। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल की आवाज़ में जादुई नगमे।

श्रोता दोस्तों, श्रेया घोषाल सिर्फ एक गायिका ही नहीं बल्कि सुरों की ऐसी कहानी है जो अपने हर गीत में नया एहसास भर देती हैं। श्रेया घोषाल की आवाज़ में मिठास भी है, गहराई भी, और भावों की ऐसी सादगी भी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती है।

दोस्तों, श्रेया घोषाल जब भी कोई गीत गाती हैं तो शब्द मुस्कुराने लगते हैं, और जब दर्द भरा गीत गाती हैं तो एहसास आँखों तक उतर आता है। वहीं जब किसी मधुर धुन को अपनी आवाज़ देती हैं तो वो गीत यादों का हिस्सा बन जाते हैं। श्रोतो, दोस्तों, श्रेया घोषाल की गायकी की यही खूबसूरती है कि वे गीत को केवल गाती ही नहीं बल्कि उसे जीती हैं। उनके सुर में नज़ाकत होती है, हर शब्द में अपनापन, आत्मीयता, और हर प्रस्तुति में एक अलग ही चमक दिखाई देती है।

दोस्तों, श्रेया घोषाल फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी गायिका हैं जो अपनी गायकी से सुनने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। श्रेया घोषाल की गायकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर गीत में भावों को पूरी ईमानदारी से उतार देना, चाहे वो किसी भी तरह का गीत हो, प्रेम भरा हो, विरह हो, उत्सव हो या सूफियाना रंग हो, श्रेया हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाती हैं। श्रेया की गायकी में हमें एक अलग ही कोमलता महसूस होती है। उनकी आवाज जब धीमे सुरों में बहती है तो श्रोता खुद को गीत का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, अब इनकी आवाज में गाया ये बहुत प्यारा गीत आपको सुनाते हैं और आप इस गीत को सुनकर जरूर महसूस करेंगे कि श्रेया घोषाल की आवाज़ बेमिसाल है, बेजोड़ है, मनभावन है।

श्रोता दोस्तों, पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल अपनी माँ धर्मिष्ठा को अपना पहला गुरु मानती हैं। 4 साल की उम्र से ही श्रेया घोषाल की माताजी ने उन्हें तानपुरे के साथ रियाज करना सिखा दिया था। संगीत की दुनिया में कदम रखने से पहले बचपन में श्रेया अपने पिता की तरह एक वैज्ञानिक बनना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि संगीत में इस कदर बढ़ी कि उनकी आवाज़ में संगीत के मीठे सुर निकलने लगे। 12 से अधिक भाषाओं में श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ दी है गीतों में। यानी यूं कहें कि श्रेया घोषाल को न केवल हिंदी बल्कि बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और मराठी सहित 12 से ज़्यादा भाषाओं में गाने में महारत हासिल है, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और महज 16 साल की उम्र में

घोषाल ने फिल्म देवदास के गाने रिकॉर्ड किए और उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष थी। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में आपकी आवाज़ इस कदर छा गई कि दुनिया में भी श्रेय घोषाल की आवाज़ को पसंद किया जाने लगा और अमेरिका के ओहियो राज्य ने श्रेय घोषाल की आवाज़ और संगीत के सम्मान में हर साल 26 जून को श्रेय घोषाल डे घोषित किया है, यानी उनको ये सम्मान दिया है 26 जून को श्रेय घोषाल डे के रूप में मनाकर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है किसी गायक या गायिका के लिए, और श्रेय घोषाल अपने आप में बहुमुखी प्रतिभा की बेमिसाल धनी हैं।

दोस्तों, श्री घोषाल का जन्म 12 मार्च 1984 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के बहरामपुर में एक बंगाली परिवार में हुआ था और उसके बाद राजस्थान के कोटा के पास रावतभाटा में आपका पालन पोषण हुआ और स्नातकोत्तर परिवार में आपने संगीत सीखना शुरू किया। श्रेय घोषाल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और संगीत को अपना जीवन बना दिया।

श्रोताओ, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि श्रेय घोषाल रिकॉर्डिंग से पहले गीत के शब्दों और उसके भावों को समझने पर खास ध्यान देते हैं। उनके लिए गायन केवल सुर नहीं बल्कि कहानी सुनाने जैसा है। श्रेय घोषाल का कैरियर अलग अलग पीढ़ियों के लिए, संगीतकारों के लिए, कलाकारों के लिए जुड़ना और उनके साथ बेहतरीन तरीके से काम करना और गीत को ऐसा गीत बना देना कि वो हर पीढ़ी को पसंद आए। जहाँ कहीं गायक अपनी शैली बदलते रहें, वहीं श्रेया ने अपनी स्वाभाविकता, अपनी मधुरता और अपना स्पष्ट उच्चारण बनाए रखा। फिल्मी संगीत में श्रेया घोषाल की आवाज़ को रोमांटिक और भावनात्मक गीतों के लिए बहुत ही खास तौर पर पसंद किया जाता है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, श्रेय घोषाल जी के बारे में बातें करते हम उस मुकाम पर आ गए हैं कि उनके बारे में तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि श्रेय घोषाल जी की आवाज़ हमें ये एहसास दिलाती है कि संगीत केवल सुना नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। किसी ने कहा भी है कि सुरों की ये शाम यूं ही सजती रहे, गीतों के महफिल यूं ही महकती रहे, हर दिल में संगीत का उजाला रहे और हर सफ़र में मधुरता का साथ बना रहे। और ये मधुरता हमें आती है श्रेय घोषाल के गीतों से। और चलते चलते उनकी आवाज़ में ये गीत बनता है।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम ये आज का कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं कि आप सभी खुश रहें, अपने जीवन में स्वस्थ रहें और जुड़े रहें आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के साथ। अब अपने दोस्त प्रदीप को कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ क्षण में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम। हमारे केंद्र से अगला कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा, चांदनी रातें। कृपया हमारे रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स

0: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
0: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से

0: कि भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की

0: इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Centre to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximise benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Chou Tin Chen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability,

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है मुगले आजम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी मन्नाडे और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है रोशन की, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।

0: में डटके रहता मैं आया है राजा
1: लोगो रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: चुमलो चुमलो
0: आया है राजा
1: लोगो रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: चुमलो चुमलो
2: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8,500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
3: वो तो

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस

दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे और इस तरह से इलैया राजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैया राजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहाँ वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिन थई किलन थे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलैयाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राजसिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें

0: की इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की टुकड़ी है क्या जोर से बजी है।

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

इलैयाराजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाक, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है, और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी, इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है, और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है।

इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलियाराजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलियाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैया राजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैया राजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहन लाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैया राजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैया राजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैया राजा और मणिरत्नम का साथ सन 1991 में आई फिल्म थलपथी, जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा

एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्मी करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बना

0: संगीतकार इलियाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम चांदनी रातें।

चांदनी रातें कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। श्रोताओ, सवेरे 5:38 से शाम 4:30 तक हमारे जितने भी श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेश हमारे पास आए, उन सभी के फरमाइशी गीत हम शामिल करेंगे, उनके नाम शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में और सुनेंगे आप सभी के फरमाइशी गीत इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का ये सुरीला सफ़र इस गाने के साथ। सनम बेवफा फिल्म का यह गाना है, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं सावन कुमार, संगीतकार महेश। इस गीत की फरमाइश की है आप सबने। चरखी दादरी हरियाणा से खुशबू, नम्रता, खुशदीप और इनके परिवार के सदस्य। गांव जाखोत राजस्थान से शंभूदाल खट्टक, विमला देवी खट्टक, अमरजीत सुंदरलाल खट्टक, योगेंद्र कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खट्टक। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ के साथी हैं परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रजेश संघई, प्रदेश संघई। मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, आदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे। गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया।

इसी गीत की फरमाइश की है आप सबने, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। सहावर टाउन गंजुड़वारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमसुल कमर राही। रघुनाथपुरा जिला गंगानगर से राजस्थान के साथी हैं लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिफा रिहान, समरीन परवीन, माहिरानूर। शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता भाकरे। लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, सुमन कोमल, परिकृतिका, रमेश डांगी। इसी गीत की फरमाइश की है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अंकुश अरोड़ा। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान, सौरभ शर्मा, साइना और मैंडी शर्मा। सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत सनम बेवफा फिल्म से। आपकी फरमाइश आपको नजर।

इस बहुत ही मनभावन गीत के बाद दोस्तों आइए अब सुनते हैं कालिया फिल्म का गीत किशोर कुमार आशा भोंसले की आवाज में। गीतकार है मजहर सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत की फरमाइश की है आप सबने वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर इंद्राताई खोबरखेड़े, खांडवी बुलढाणा से दीपावली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े, बेरडी मध्य प्रदेश से हुकम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची और तनु करमकर, अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजा बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अलिया अनवर, रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आजाद, पदमपुरा जिला गंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा, दुर्गा कॉलोनी हांसी से फरमाइश भेजी है राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नंदीम पटेल, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा की फरमाइश है, गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, दरियापुर भामली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, सुशील सेरी वडनेर अकोला से। गीत सुनने वाले हैं आदित्य दामोदर, अरुणा दामोदर, गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। फरमाइश भेजी है गांव लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ से गोविंद, वैष्णो, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फार बिसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार, विमल कोपरगांव से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, श्रद्धा मालोदे, मानसी मालोदे, गांव जगुड़ी यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, मनराज, नागल से इनके साथी हैं रमेश, गांव पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति, अंजनी, रेखा, धनेश्वरी, राजीव और रजमत वर्मा, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजित कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल। सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर कालिया फिल्म का ये दो गाना। फरमाइश आपकी, आपको नजर।

गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश भुवेश कुमार कंबोज। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा गायकवाड़, दीपांजलि गायकवाड़।

दीक्षा बागमारे और शशांक बागमारे, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी नाम अब्बासी, यशफ अब्बासी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। व्हाट्सएप संदेश हमारे पास आया है जैन मंदिर वाली गली कुराबली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसमा अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। गांव सिली कला से जय सिंह काम्बोज, विजयंत सिंह काम्बोज, रिदम निश्चय सिंह काम्बोज, जयपाल धीमान। गांव हरुडी चांडील झारखंड से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा मनमोहिनी महतो, दीनबंधु महतो। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती। ओम रेडियो श्रोता संघ के साथी हैं कोहली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओंकार गायकवाड़, साई गायकवाड़। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, नांदेड़ महाराष्ट्र से। सागर लखनादून मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, सक्षम रिमझिम चौबे, रानू चौबे। अनारकली बाजार जगराऊं से इस गीत को सुनना चाहा है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका, गव्य मल्होत्रा, सुचर सिंह पाठक। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवम जैन। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की, सुतासु अर्णव, आनंद सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत की फरमाइश पर। आइए सुनते हैं फिल्म मरते दम तक का ये टाइटल सॉन्ग, मोहम्मद अजीज अनुराधा पुरवाल की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। सुनिए आप सबकी फरमाइश पर ये गाना।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। फरमाइश आई है जिला झारखंड बड़ा बाम्बो सुपाई साई गांव से देवेंद्र तांते, राकेश तांते, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी, देवेन जी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रीतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कालका से शुभचंद्र बजाज, बेटा बजाज, बोरखेड़ा पित्रमल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन, दिलीप सिंह पंवार, कर्मा चौक लोहारीडी कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू की फरमाइश, सनावत से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अबासी, निगहत परवीन अबासी, शाहनवाज सरफराज और अबासी परिवार के सभी सदस्य, शीतल रेडियो श्रोता संघ के साथी हैं, गांव बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा, डॉक्टर अमित, सचिन, मास्टर समराज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा, तालुका शेवगांव मुंगी पैठन महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगनकर, सागर भाई कंगनकर, परमेश्वर, रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी कंगनकर परिवार के सभी सदस्य, फुलोंग निजामाबाद से तेलंगाना के साथी हैं एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, जुनेद जुबेर, मुकरम नुमान, फुरकान, जाकिर फाजिल, गांव लसूड़िया पाता तहसील से सुमन कोमल परी की फरमाइश है, रोहिदास चौक पंडपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्ण घोड़के, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, नीति शाह, बंगलाबेन शाह, पल्लवी शाह, कुशल शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह और राजेंद्र जी शाह, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप जाजोरिया, आरजू और गुड्डू, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीपी रांझो, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, विकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलम, रमापुरी, पाली और सुनील पाठक, विकेपुरी। सुनिए आप सबकी फरमाइश पर दिले नादां फिल्म का ये दो गाना किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में, बोल है नक्श लायलपुर के, संगीत है खयाम साहब का।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। इस गीत की फरमाइश आप सबने भेजी है लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी मनोहर भाई बागरी प्रभुलाल बागरी बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनमोहन मनभावन शोभा कपिल नैना सत्यनारायण फुंदी भाई बागरी जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर परमजीत आसम कौर धर्मजीत फातिमा कौर तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन एमडी फरजान एमडी फरहान समेरा आजमिन गुड़िया जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार नरगिस खातून आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जघेल मोरस जघेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष नंदनी जघेल धमदा गांव सुखरी कला से अमित जघेल शकुन आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि जघेल बलोदा से प्रभा डोमिन प्रमिला डोमिन आशा डोमिन निशा डोमिन और पूरा डोमिन परिवार छत्तीसगढ़ के हमारे साथी हैं अशोक कुमार साहू मीरा देवी गंगा देवी मिश्री देवी और इनके परिवार के अन्य सदस्य मोहल्ला शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजदा रानी और हिना कोसर गांव निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा जतिंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर करमजीत कौर। इस गीत को सुनना चाहा है सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे सैफुल्ला सवाहत किरण हुजरे रेहान शेख। सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर बावरी फिल्म का ये

दो गाना येसुदास और लता मंगेशकर की आवाज में गीत हैं, बोल माया गोविंद के संगीतकार हैं खयाम। फरमाइश आपकी, आपको नजर।

श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं शंकर हुसैन फिल्म का गीत। गीतकार हैं कैफ भोपाली, संगीतकार खयाम, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत की फरमाइश की है आप सबने शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला, जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजी है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी। इसी गीत की फरमाइश आई है हमारे पास गांव मुरादगढ़ से रामपाल कंबोज और इनके परिवार के सभी सदस्य। नलेश्वर नगर नरवीर महाराष्ट्र से पी एस नावकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, पाटिल, राजदीप, राजेश। जिला खरगोन सुनाल मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार पुराना। गांव पंचायत बोरी खुर्द से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, राजे जाधव, जगुताई, संचित वायाल, कुमारी प्रणाली देशमुख, प्रथमेश देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, सर्वत देशमुख। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार रूढ़ी, प्रमोद कुमार रूढ़ी, पुष्पेंद्र कुमार रूढ़ी। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। गांव कुम्हारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेरा जहां। सदर बाजार मारवार बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, जॉर्जी डिकेस्ट्रो, परल डिकेस्ट्रो, ब्रिटिश डिकेस्ट्रो की फरमाइश है। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, एमडी फजान, एमडी फरहान, समीरा, आजमिन कुड़िया। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत।

इस नायाब गीत के बाद हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत है। रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी। दाऊदसराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी। कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी। छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई फुलवाले, दुखना सदफ, जोही इकबाल। लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद, अखलाक अहमद और समस्त फुलवाले परिवार। तिरुपति नगर नांदूरा से संतोष वसानी, उषा वसानी, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक। दिंडोरी नासिक से विशाल गवली, सोनाली गवली, समर्पण और भक्ति गवली की फरमाइश है। गांव रंडी तहसील भद्रवाह जिला डोडा जम्मू कश्मीर से परशोत्तम कुमार, शेख जफर हसन, उस्मान अली अंसारी, मोतीलाल। भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांतारानी गुंजन, साहिल और वाणी जयजान। जमशेदपुर झारखंड सुपाही गांव साही गांव से निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, देवेन। नवीन रेडियो श्रोता संघ के साथी हैं रानी कामट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, उदयभान ठाकरे, दीपक ठाकरे, नवीन ठाकरे और गौरी ठाकरे। डेरपाटन गुजरात से धीरज वी रबारी की फरमाइश हमारे पास आई। छत्रपति नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। भैंसवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े। गांव पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकर्ण वर्मा, अंजलि, अंजनी, राजिम वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना। संगीतकार हैं खयाम, फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

तो श्रोता दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का चांदनी रातें कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में हम फिर किसी और दिन हाजिर होंगे लेकर आपकी फरमाइश के गीत। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए अपने जीवन में। अब अपने दोस्त प्रदीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें, आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है, एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।

0: स्क्रीन नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है।

वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।